ولا شفيع

फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरू हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हां, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है, क्या तुम ख्याल नहीं करते? भला मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमनो बेखौफी का ज्यादा हकदार है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्वस नहीं किया उनके लिए अमनो बेखौफी है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है।

إسماعيل واليسع ويونس وإسحاق.

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तियाब आई।
2: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन
3: 3004372 आई 0242460100।
4: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में लाल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी

अमेरिका ऐं ईरान विच में मुआहिदे ते सयूं थी चुकियूं आहिनि। जुमे जे आड़े सयन वारी बाज़ाबता तकरीब में शिरकत करण या न करण बाबति सोचे रहियो आहियां, पर जीडी वेन तकरीब में शिरकत ज़रूर कंदो। मुआहिदे जो मसूदो सयन बाद कंहिं बि वक़्तु जारी कयो वेंदो। आपने हुरमत बि खुली वई आहे। जुमे ताईं जहाज़नि जी अचवञ मुकमल तौर ते बहाल थी वेंदी। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप जी फ्रांसी सदर एमनुअल मैक्रोन सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे एटमी हथियार हासिल करण खां रोकण लाइ सख़्त निगरानी जारी रहंदी। पाबंदियुनि में नरमी तेज़ी ताईं न थींदी जेसिताईं ईरान उहो नथो करे जेको अमरीका चाहे थो। ईरान सां लाॻापा खु़शगवार थियण जी उमीद आहे। इहो अहम आहे त तेल जूं क़ीमतूं घटि थियनि ऐं स्टॉक में बेहतरी अचे। हाणे फ्रांस बि आपने हुरमज़ में मदद लाइ तयारु आहे। मुआहिदे जो मक़सदु दोहनि खे माफ़ करण या विसारण नाहे। ईरानी क़ौम पंहिंजी क़यादत खां महरूम थी, अमरीका ऐं इसराइल ज़ुल्मनि खे कॾहिं बि न विसारींदी। आपने हुरमज़ जा समूरा मामला ईरानी ॾिसंदो। लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंग ख़तम थियणु घुर्जे। अमरीका सां मुआहिदे बाबति ईरान जो बाज़ाबता मौक़िफ़ साम्हूं अची वियो। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त असां वॾियूं वॾियूं क़ुर्बानीूं ॾेई पंहिंजे वतन जो दिफ़ा कयो। ईरान अवाम पंहिंजे फ़ौज जो पूरो साथ ॾिनो। आलमी बरादरी इसराइल ऐं अमरीका जे ज़ुल्मनि जी मज़म्मत करण में नाकाम रही। अमरीका सां मुआहिदे ते जुमे ते जिनवा में सयूं कयूं वेंदियूं। ईरानी अमलदार पाड़ेसरी मुल्क़नि जा दौरा कंदा। अमरीका खे ईरानी अवाम जो भरोसो हासिल करण लाइ डिघो सफ़र करणो पवंदो। ईरान हाणे वधीक ताक़तवर थी उभरियो आहे। जिनवा में 19 जून ते अमरीका ऐं ईरान विच में मुआहिदे वारी तकरीब जी मेज़बानी पाकिस्तान कंदो। जंग जे डुघी रात बाद ऐं अमुन जो सिज निकिरी चुको आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त ईरान ऐं अमरीका लबनान समेत समूरनि महाज़नि ते जंग रोकण जो ऐलान कयो आहे। तारीख़ी मुआहिदे जी तकरीब 19 जून जुमे वारे ॾींहुं जिनवा में थींदी। ही ॿिनि मुल्कनि में अमन मुआहिदो न पर लहाब ऐं सफारतकारी जी फतह आहे। मुआहिदे ते अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा कमलाई समेत सभिनी खे मुबारकबाद ॾियां थो। जेसी ताईं मुआहिदे जा समर अवाम ते न पहुचंदा, सुख सां न वेहंदुसि। हुकूमत बजेट में हेराफेरी अटक करे वई आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे आगाही। नवीद कमर जी ब्रीफिंग खां पोइ बिलावल भुट्टो अॼु ऐवान में रिथियल बजेट तकरीर मुलतवी करे छॾी। हुकूमत खां अॻु अंग अखरनि में फेर बाबति वज़ाहत वठण जो फ़ैसिलो। ज़रियुनि मूजिबि MLA नवीद कमर पार्टी सरबराह बिलावल भुट्टो खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त पीपल्स पार्टी सां शेयर कयल बजेट ऐं ऐवान में पेश कयल बजेट जे अंग अखरनि में वॾो फ़र्क़ु आहे। ऐवान में इहा बजेट पेश नाहे थी जेका पीपी खे ॾेखारी वई हुई।

0: सिंध जी नए माली साल जी बजट 17 जून अरबा डी पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाजमन की पगार में 10% रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में 8% ए पोरतन की माहवार अजूरे में 20% वाद जो इम्कान। सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली के बजट इजलास अरबा डी 2 बजे तलब कर वरतो। सिंध असेंबली के बजट इजलास का अग बजट की मंजूरी ला सिंध काबिना का इजलास भी नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रुपये का घट रहने जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली सेहत ए तालीम वे मनसूबन की अहमियत डी वी। वो वजीर मुरादरी शाह नाणे वाले वजीर की हैसियत में 2 भेरों सिंध की बजट पेश कह। मरदान में तरबियती जहाज किरी तबाह, 2 पायलट शहीद। ISPR मौजूद जहाज मामूल वे तरबियती उडाम दौरान किरी तबाह थो। हादसे के नतीजे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला ए बेरिया जो लेफ्टिनेंट अबासी शहीद थी वो। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर हथियारबंद फौजन के सरबरान पारा हादसे के दुख जो इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, घरू वजीर मोहसिन नकवी, वो वजीर मुराद अली शाह बिन पारा हादसे में बिन जानन के नुकसान से अफसोस जो इजहार किया। असिस्टेंट स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी जो ऐलान कर छो। व्याज की शरह 11.5% बरकरार रखने जो ऐलान। स्टेट बैंक इजलास बाद पॉलिसी जो ऐलान कर।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
2: सोलर एंड बैटरी से डायरेक्ट है।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 बजे खां रात 8 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0359।
6: अदा
7: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न? अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301399282।

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ हम चलेंगे आगे और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. इसी के साथ एक और सॉन्ग की तरफ हम मूव करेंगे. इस सॉन्ग के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आप में कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चले
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: हाफिज सावल बात कर रहा हूँ, बजरंग सर क्या रहे, ठीक हो?
0: हाफिज सावल भाई कैसे, ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक
1: हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ
0: यार। ओके, गाना सुनाएंगे?
1: गाना सुनाऊंगा, मन का बलाई का।
0: ओके, सुनाए प्लीज।
1: इंतजार बराबर लाए जब यार कोई दे, या ना दिया सर लाए जब यार कोई दे।
0: ओके, ये इस गाने का टाइटल क्या है वैसे?
1: इंतजार
0: इंतजार इंतजार बस
1: इंतजार बराबर है यार।
0: चले मैं इसको देखती हूँ, सर्च करती हूँ जी। और इसके अलावा कुछ कहेंगे
1: मेरे दोस्त है?
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।

0: मुझो मुझे करार मुझो पंजे तन पाठ प्यार आए मुझो पंजे तन पाठ प्यार आए
1: ओके
0: अरे दम जवान दायो अली अली बुद्धि मन

0: किसकी आवाज में ये?
1: ये महबूब मीर जट।
0: महबूब मीर जट,
1: ये मेरी शायरी है।
0: ओके जी ठीक है,
1: मिल जाएगी।
0: ओके जी मिल गया है मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। और ये कसीदा हम प्ले कर रहे हैं, इसी के साथ हम आगे चलेंगे।

0: GA Sakha. आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर के रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

ओके जी, इतना श्लोक आया है. ये रहा आपका गाना. थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें. और गाना

देखिए जी, और इसी के साथ आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरह से है कि आपने कह के दिखाना है, परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी। ठीक है, पे से टंग ट्विस्टर है आज का, परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी। परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी। ठीक है, ये कहना है और ये कह के दिखाएंगे, तो जो ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे। नेक्स्ट सॉन्ग के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आप सुन

0: का है निवास।
1: पूरे मोहल्ले में बातें हो रही
0: कि वो आशिक मार खा के भी वापस नहीं गया।
2: चला जाऊंगा,
0: और अगर मैं रोक लूं तो,
3: और अगर मैं रोक लूं तो

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

जारी रहा दियूं। वफाकी करू वजीर मोहसिन नकवी जमायत इस्लामी अमीर हाफिज नईम से मुलाकात। मुल्क की सियासी अमन अमान ए मुआशरत हालत गाल बिन्हीं अगवान पारा अमरीका ईरान मुआहदों खिते बेहतरीन करार। हाफिज नईम ईरान ए अमरीका मुआहदे ला पाकिस्तान जो किरदार हमेशा याद रखो वो। घरू वजीर मोहसिन नकवी खिते में चिकटाण के खात्मे जो क्रेडिट पाकिस्तान जो है। वजीर आजम ए फील्ड मार्शल खिते के अमुन लाइन मिश्रण जो किरदार अदा किया। गंबर की गोठ सताबू में कारें इल्जाम हेठ सोट अत सोट नारी कतल। जवाबदार सोनो बारीजो पंजे सोट समीना बारीजो के गोलू हणी कतल कयो। पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस मौजूद जवाबदार के गिरफ्तार कयो है। मामले की जांच बाद केस दाखिल कयो वेंदो। हैदराबाद वरसा सेरीवार इलाके में फुड़ीली वाह में बजना बुड़ी पाया। इतलात रेस्क्यू टीम पहुंची सन गोला शुरू कर छी। रेस्क्यू टीम मौजूद बिन जन बुजुर्गों इतलाबाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बुधा पे तो बुरीवर में नौजवान नारी शामिल हैं। लखी गुलाम शाह में सुमरानी शाख के आबादगर जो शाखी के खाट न थियण और पानी के खोड़ खिलाफ एहतजाज। आबादगर मुजिब गुजर टी साल सुमरानी शाख के खाट ही न थियण सब मिट्टी से भरती वही है। वाह के आखिर तक पानी न पहुंचने सब जमीनों बंजर थी रही है। पानी पुछण तक पहुंचाया वे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में नींगरी ए नारी समेत टे जणा मुबैना तौर से अगवा। वारस परेशान बाजियाब कराने जो मुतालबो। तंगवाणी भरसा 10 साल नींगरी मुबैना तौर से अगवा। गोट मोहम्मद रहीम माची में 10 साल की नींगरी जीनत दी अमीर बख्श माची के मुबैना तौर से अगवा किया वो। वारसन मूजिब वह सुता पाया हुआ। खबर न तो नींगरी के कड़े वक्त अगवा किया वो है। नींगरी के बाजियाब कराया वे। मीरपुर बुरड़ो के गोट काबुल बुरड़ो में 18 साल नारी मनसिया मुबैना तौर से अगवा थी। नारी के चाचे काबुल बुरड़ो चाह है। कैसर कोसो नारी के अगवा किया है। खेस बाजियाब कराया वे। खैरपुर जो नौजवान इमरान लाशारी व पुरसार नमूने गुम। वारसन के अगवा जो शक बाजियाब कराने जो मुतालबो।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-8459
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
3: न अदा
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
4: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
3: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

जी जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीके का, सिंपली मैसेज, कॉल्स और कमेंट्स के थ्रू, जो कि आप कर भी रहे हैं. हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा बोलो तो माने. और बोलो तो माने में एक अदद टंग ट्विस्टर आप लोग कहके दिखाएंगे. आज का टंग ट्विस्टर, परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी. परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी. और ये कहके दिखाएंगे. और ये कहने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300111348. इसके ऊपर कॉल करेंगे.

0: ओके जी, कॉल्स मुझे आना शुरू हो चुके हैं, आप लोगों की तो कॉल्स लेंगे. एंड फर्स्ट कॉलर ऑफ द सेगमेंट, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोरो से पहली दफा कॉल कर रहे
1: हैं?
0: थैंक यू सो मच. और मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाई बोलेंगे?
1: नहीं सुना,
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज. और कुछ कहेंगे?
1: जी भाई, मैं अपने बेटा है छोटा मुंह बदल
0: गया,
1: और मेरे फ्रेंड से
0: मोहम्मद
1: कासिम
0: जल्दी. थैंक यू सो मच, थैंक यू. इतना टाइम सोचने पे लगाएंगे तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? 03000 11 34 88. एक और कॉलर लेंगे. हेलो
2: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई, कैसे? ठीक ठाक. जी तभी ठीक है, आपकी ठीक है?
2: अरे ठीक है भाई, थोड़ी बहुत सही, ठीक नहीं है, जुकाम हो गया.
0: जुकाम हो गया, लग भी रहा है आवाज से. अच्छा मुझे बताएं कि आज फिर टंग ट्विस्टर हो रहा है शुरू में या नहीं?
2: जी
0: टंग ट्विस्टर सुनाए?
2: हाँ सुनाएगा, मैं सुनाएगा.
0: अच्छा जी, चलें जी फिर बता दें, सुना दें शुरू में, शुरू में सुनाइएगा.
2: शुरू में?
0: हाँ जी.
2: मुझे तो लगता है मैं कभी कभी कह आप मुझसे जो बात करोगे ना वो भी बोलोगे कि शोर में बात करो.
0: नहीं अभी तक तो इतना ही है कि खैर टंग ट्विस्टर शुरू में सुनाए तो ज्यादा अच्छा लगता है हमें.
2: चलो जी सुना रहा.
0: यस.
2: परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी. परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी. परवीन ने पहाड़ी पर पड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी. परवीन ने

0: ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. और कुछ कहेंगे?
1: सही आवाज नहीं निकल रही, नहीं सही निकल रही.
0: मेरे ख्याल से जुकाम में जो है ना आपको ज्यादा सुर आ जाता है.
1: हाँ, सुर कहाँ लगा मैम, कहाँ लगाया, मुझे तो कुछ मजा नहीं आया, जुकाम में सुर नहीं लगा.
0: नहीं, हमें तो बड़ा मजा आया. खैर, और कुछ कहेंगे?
1: और ये कहेंगे कि मैम कल मेरी कॉल नहीं लगी 7 बजे वाले शो में. कॉल मैं मिला रहा था, हालांकि मेरे पास दूसरा नंबर भी था, दूसरे भाई का नंबर मोबाइल था उसका, तो मैं चला के बैठा था ऐसे ऐसे.
0: तो
1: उसकी कॉल ना मेरी, मैंने कॉल मिला रहा था ना, तो दूसरों की कॉल लग रही थी, मैं कॉल मिला रहा था, पावर्ड आप बता रहा था ये क्यों.
0: अच्छा, अब ये तो मैं वाकई नहीं जानती कि ऐसा.
1: हालांकि देखो मैं फोन चला के बैठा था, दूसरों की कॉल लग रही थी, दूसरे बात कर रहे थे, जो भी है, मतलब मैं कॉल जब मिला रहा था पावर्ड ऑफ सर, नंबर यू हैव डायल्ड इज पावर्ड ऑफ.
0: आई लिटरली डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देती. और अगर नहीं लगी कॉल तो खैर कोई बात नहीं, आज लग गई. ठीक है.
1: ठीक है मैम, ठीक है.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. और ये थे स्वीट कॉलर सागर भाई. सुरों की कमी नहीं है इनके पास, हर चीज सुर में करते हैं. 03000 1134.

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
6: Studio, Season 14.

0: Okay, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का हमारा सेगमेंट इस वक्त हो रहा है, दैट इज बोलो तो माने. बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कहकर दिखा रहे हैं और वो जो एक अदर टंग ट्विस्टर है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग कह के दिखाएंगे. परवीन ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवाज करवा दी, ठीक है ये कहना है. तो आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के लिए 03000113488 के ऊपर कॉल कर सकते हैं. आप लोग नेक्स्ट कॉलर रिसीव करने जा रहे हैं. हेलो हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? गाजी खान रिंग. भाई दोबारा कॉल लगी आपकी है ना?
1: जी जी.
0: तो मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुना है आपने?
1: हाँ जी सुना है.
0: बोलेंगे?
1: जी जी.
0: तो बोले,
1: परी ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवान चढ़वाई, परी ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवान चढ़वाई, परी ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवान चढ़वाई, परी ने पहाड़ी पर बड़ी पतंग फिर परवान
0: वेरी नाइस. आपने तो बड़ा अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है आज.
1: हम तो आपको शुरू में भी सुनाना चाहते हैं, आप सुनती नहीं हो ना?
0: मैं सुनती नहीं हूँ, क्यों?
1: आप एक दिन मैंने बोला धुन में आपको बताओ, तर्ज में आपने नहीं, कैसे बताओ.
0: ओके जी, चले ठीक है. और कुछ, और कुछ कहेंगे?
1: बस अल्लाह आपको खुश रखे और दुआ करो मेरे वाल साहब की तबीयत सही नहीं है, दुआ करो सही हो जाए.
0: चलिए अल्लाह पाक उनको बहुत सारी सेहत अता फरमाए. थैंक यू सो मच. आमीन सुमा आमीन. अल्लाह हाफिज. और 03000113488 अभी तक तीन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर बोला है.

जी एक और गाना प्ले करते हैं एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आई थिंक. सो इसको सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और

कोने जरा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है. महबूब मीर जट की आवाज में कसीदा सुना दे. तो मैंने सुना दिया था, ठीक है. आज का तंग तुश किसने अच्छा अच्छा बोला है वो साथ साथ आपको बताते जाते हैं जी. गाजी खान रिंद ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला था. सागर भाई ने बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर कहा था. तो ये लोग आज के विनर्स हैं. तीसरा और किसी ने भी कहा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि किसने कहा था.

Okay, a beautiful song. And finally, इसी song के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत. इस song के साथ ही next भी break करूँगी. So inshallah मेरी आपसे चुटचाट होगी अब कल on same time, same channel, same show, the same RJ. सुना मत भूलिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हमेशा जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. Live simple but think high. So this is me, RJ Rukhsar. Signs out. Take care. Goodbye. Ba amani khuda. Allah hafiz.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के 30 करोड़ डॉलर देने वाली खबर के फेक न्यूज करार दी छो। डेमोक्रेट्स के कूड़ी खबर फैलाने के इल्जाम, समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान कदें भी एटमी हथियार न ठाने से राजी थी पो है। अमरीका और ईरान विच में मुआदे से सहयोग भी चुको हैं। जुमे थींदड़ तकरीब में शिरकत करण या न करण बाबत फैसलो ना किया। जीडी विन तकरीब में शिरकत जरूर कद। नायब सदर जीडी विन सहवाद सदर ट्रंप जुमे का पैर भी मुआदो जारी करे सके तो 150 सफे से बदल रस्मी मुआदो है। तेहरान खिते में अमुन इस्तेकाम यकीनी बनाई एटमी हथियार भी न ठाई। ईरान जंग अमरीकी साख के खत्म कर छो। इसराइल के जवाल जो अमल भी तेज थी पो। ईरानी कदर फोर्ट के कमांडर इस्माइल कानी है तो शदीद दबाव वही तबाही ए संगीन हमलों बावजूद मजामती महूर पोते ना हटो जै सबब मुखालिफ पोते हटण से मजबूर थे। दुनिया हिजबुल्ला की मामूली ताकत डिठी है। हकीकी ताकत अना घनी है। ईरानी फौज चाहे दुश्मन मुआदे की भनकड़ी कई तो तकड़ो ए सख्त जवाब दिनों वो। ईरानी फौज चाहे तो दिफा लाए तैयारी जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे इजलास। वजीर आजम शमसी तवानाई मनसूबो जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चो तो अजीबी लाइ शमसी मनसूबे जो समूरो खर्च वफाकी हुकूमत बर्दाश्त कंदी। वफाकी करू वजीर मोहसिन नकवी के जमायत इस्लामी जमीन हाफिज नईम से मुलाकात। मुल्क के सियासी अमन अमान ए माशी सूरतहाल से गालू। बिन्हीं अगवान पारा अमरीका ईरान मुआदो खिते लाए बेहतरीन करार। हाफिज नईम चो तो ईरान अमरीका मुआदे लाए पाकिस्तान जो किरदार हमेशा याद रखो वो। घरू वजीर मोहसिन नकवी चो तो खिते में चिकटाण के खात्मे जो क्रेडिट पाकिस्तान जो है। वजीर आजम फील्ड मार्शल खिते जमुन लाए नविसरण जो किरदार अदा किया। कमर के गोट सताबू में कारें इल्जाम हेट सोट था सोट नारी कतल। जवाबदार सोनो बारीजो पैं सोट समीना बारीजो के गोलियों हणी कतल कर। पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस मौजूद जवाबदार के गिरफ्तार किया है। मामले की जांच बुनी पाया। फिलहाल से रेस्क्यू टीम पहुंची उन्होंने गोला शुरू कर छी। रेस्क्यू टीम मौजूद बिन जन की बुधण वाले इतलाह बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बुधा पे वो मुड़ी भरण में नौजवान नारी शामिल है। लखी गुलाम शाह में सुमरानी शाख के आबादकार जो शाख की खाटी न थियण ए पानी की खोट खिलाफ एहतजाज। आबादकार मूजिब गुजर 30 साल का सुमरानी शाख की खाटी न थियण सबब मिट्टी से भरजी वही है। वाह आखिर तीन पानी न पहुंचने सबब जमीनू बंजर थी रहा है। पानी पुछण से पहुंचाया वे। चक में मर जितो ही खूनी तकरार जरगे की रोकियल फतवा ब जोलाए से बुधाई वेंदी। जरगे की सरपंच अलीगवर महर गोस बख्श महर ए इब्राहिम जतोई के इतला कर छो। महर जितो ही खूनी तकरार जरगो 20 और 21 अप्रैल से सर्किट हाउस सखर में थो। टिंदड़न के कतल वाले मामले से जरगे की फतवा रोकी वही हुई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में नीगरी ए नारियों समेत 4 जणा मुबैना तौर से अगवा वारस परेशान। बाजियाब करण जो मुतालबो नीगरी तंगवाणी भरसा 10 साल की नीगरी मुबैना तौर से अगवा। घोट फतेह मोहम्मद रहीम माछी मां 10 साल की नीगरी जीनती अमीर बख्श माछी के मुबैना तौर से अगवा किया वो। वारसन मूजिब वो सुता पाया हुआ तो खबर ना तो नीगरी के कड़े वक्त अगवा किया वो। नीगरी के बाजियाब कराया वे मीरपुर बुरड़ो के घोट काबुल बुरड़ो में 8 वरों की नारी मनसिया मुबैना तौर से अगवा थी। नारी के छाचे काबुल बुरड़ो केसर खोसो नारी के अगवा किया है। केस बाजियाब कराया वे। खैरपुर जो नौजवान इमरान लाशारी पुरसरार नमूने गुम वारसन के अगवा जो शक बाजियाब करण के मुताबिक फैजगंज में 5 दिन का गुम 13 साल की नींगर मोइन चांग जो भी पतो न पो। नींगर की अमड़ ए भेंडन जो पाक किताब खी एहतजाज नींगर की गोला में मदद की अपील। सकरन में सोनारन जो टैक्स वधाइण ऐं कराची में सोनारन जी गिरफ़्तारी खिलाफ़ एहतजाज सोनारन कारोबार बंद करे बांध ते कारियूं पटियूं
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
4: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569
5: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूदु आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302-01800-003
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी भेट हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: सर।
1: और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए और हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 वोल्ट की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 वोल्ट की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब प्रोग्राम में बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी नात के साथ। तो बहुत ही प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं और उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो प्रोग्राम बिल्कुल जनाब व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत होते जाइए और खूबसूरतियों को हासिल करते जाइए।

0: ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा फेवरेट नात मेरी जो कि आप लोगों के समातों की नजर थी जनाब, आपने सुनी, आपको बड़ी अच्छी लगी और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, और साथ साथ जरा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। तो आज के अगर प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा किया है कि हमें ना ऐसा होता है कि खुद के साथ जो है ना वो तजुर्बे करने का बड़ा शौक होता है। हम जो भी चीज देख लेते हैं, किसी ने कोई चीज बताई तो हम ना उसे अप्लाई करने में लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई उससे अगर इस चीज का फायदा मिला है तो ये तो हमें भी फायदा देगी, और ये तो हम चीज भूल ही जाते हैं कि भाई हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो आज जो मेरा सवाल आप लोगों से होने वाला है बिल्कुल ये होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि आपने क्या कभी किसी के कहने पर कोई ऐसी हरकत की है, कोई ऐसा काम किया है खुद के साथ जिसे करने के बाद आपको ये लगा कि भाई ये तो मैंने सरासर अपने साथ जो है ना वो गलत कर लिया है। अक्सर हम किसी की कोई भी बताई चीज जो है ना वो अप्लाई कर लेते हैं, कोई भी इस तरह की जो है ना रेमेडी फील कर लेते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे वो किस भी लिए हो। लेकिन आप जो है ना बस आप लोगों को बताया जाता है, आप झट से जो है ना वो सोचने लग जाते हैं कि ये चीज जो उसे फायदा दे चुकी है वो हमें भी फायदा देगी। तो क्या आपने कभी अपने साथ ऐसा किया और वो जो इंसिडेंस हुआ आपके साथ वो फनी था या फिर नुकसानदार था या आपने उसे सीखा, ये चीज आज आप मुझे बताने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं, अगर आपने टॉपिक सही से नहीं समझा है, क्योंकि कई मरतबा मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो टॉपिक आप लोगों से पूछा है वो मैं शायद सही से आप लोगों को समझा नहीं पाई हूँ। तो मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछा है सोली सिंधी में बुधाएं था, तो छा करी तव्हां ये ट्राई कयो आ केंजी का भी एड़ी का मतलब को टोटको हुजे जेको तव्हां के अगले मानो बुधाए त बाबा मां ही चीज लगाए करे पाण ते ही ट्राई कई आई मुखे हेडो वीआईपी रिजल्ट मिलियो आ, आई तव्हां उहा चीज झट सां पाण सां मतलब अप्लाई कयो पाण ते उहा चाहे लगाई हुजे, आई तव्हां के उन जो रिजल्ट मिलियो न मिलियो या तव्हां सां केड़ो हादसो थियो या छा थियो उहो तव्हां मूं सां जेको आहे शेयर कंदा। क्योंकि कोई भी चीज अप्लाई करने से पहले ऐसा होता है कि हमें जो है ना उन चीजों से ना वो सीखना चाहिए होता है, हमें तहकीक करनी पड़ती है, लेकिन कई मरतबा हम वो चीजें कर नहीं पाते जो हमें करनी चाहिए। तो इसी मसले में जो है ना हम कहीं ना कहीं जो है ना वो फंस भी जाते हैं। तो चलें आप मुझे बताइए जल्दी से हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाइए और क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए हमारे पेज पर, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिलती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ जनाब हमारी पोस्ट को शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। ओके जी, तो शेयरिंग और कैरिंग कीजिए, हमारी पोस्ट को शेयर करते जाइए और साथ साथ लाइक करते जाइए। जिन लोगों ने नहीं किया कंजूसियां कर देते हैं यहाँ पर आप, जो अच्छी बात नहीं होती। तो चलिए जी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और मुझे बताइए कि क्या कभी आप लोगों ने खुद के साथ ऐसा किया कि आपको किसी ने कोई चीज बताई कि भाई मैंने ये चीज अप्लाई करी है, मैंने ये टोटका ट्राई किया खुद के ऊपर और मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला, आपको लगा कि ये भाई जान मुझे भी करना चाहिए। हाँ माँ शोरे जी बना भला। ओके जी, सो जल्दी से बताइए। और अब्दुल गफूर कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहावल नगर से आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। और आकाश अली हमारे साथ हैं लाड़काना से, क्या कहते हैं अली जान पीरजादो फ्रॉम ओके जी, वालेकुम अस्सलाम सारे सुनने वालों को सलाम, आप ही आप कैसी हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। OST मुझे सुनाइएगा मीम से मोहब्बत ड्रामे का, चलिए जी मैं लाजमी आपको सुनाऊंगी। आकाश आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं, पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। नजीर को समय सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम करते हैं। मीर बेवस हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारा शो ज्वाइन करते हैं, बहुत शुक्रिया। AM अंसारी कहते हैं खामोशी में राहत होती है, लफ्जों का सफर अक्सर इंसान को तनहा कर देता है। सलाम टू यू एंड ऑल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू शो व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी, जो मुझे आप कभी नहीं दिलाएंगे, शायद क्या पता दिला ही दो, मैं इतनी मतलब सखी तो हूँ कि आपको दिला सकती हूँ। हाँ जी, और ये मीर बेवस कहते हैं कि आज सॉन्ग सुनाइएगा. बिल्कुल आपको सॉन्ग सुनाएंगे. अच्छा, जिनके कल गाने रहे थे ना, वो जल्दी जल्दी से अपने गाने जो ना वो मुझे कमेंट में जरा लिख दें ताकि उनके गाने में चला सकूं पूरे प्रोग्राम में. और मोराई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद है थूफ चूसल से. वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं. और ये हमारे साथ हैं जी एएम, कहते हैं सिडो कल मिश किया बिल्कुल ऐसे जैसे यू ने मिश नहीं किया मुझे. अच्छा, मैंने किया था, मुझे लगा था कि आप कहीं मसरूफ होंगे इस वजह से नहीं आए. चलिए, आपको खुश आमदीद कहते हैं. और मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू शो मोहम्मद जमान भाई. बख्तली सियाल हमें सुन रहे हैं, हेलो भाईजान. जानी जहांगीर भाई हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद. नियाज हुसैन मलिक हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया. ऐसे बहुत से लोग जो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया. सबके साथ बातें करेंगे जी, मस्तियां करेंगे, गाने सुनेंगे और आप लोगों को बताएंगे व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए. और हमारे साथ ही यहाँ पर टाइम हो चुका है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो आपने कहीं नहीं जाना, यही रहिएगा. मैं यू जाकर यू वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए ताकि खूबसूरत हो जाए.
1: जी एफ एम

0: मसान की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वे तो राबते लिए 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 500 69 0385 69।
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो इस्तेमाल कीजिए खूबसूरतियों को, वेलकम बोलिए और जरा अपनी स्किन को एक नया चांस दीजिए जनाब खूबसूरत होने का, अपने स्किन को निखारने का और जरा ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का जो प्रोडक्ट आप लोगों की खूबसूरती को मजीद बढ़ाते जाए। तो अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, अगर परेशान हैं ब्यूटी को लेकर, खूबसूरतियाँ नहीं मिल रही, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आपने लगा कर देखे हैं लेकिन कोई बात नहीं जी, टेंशन नहीं लेनी क्योंकि टेंशन लेने से भी आपकी स्किन जो है वो मजीद खराब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, बस आपने इस्तेमाल करना है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए अवेलेबल है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, जो कि नाइट क्रीम है, व्हाइट एज ब्यूटी सोप है, व्हाइट एज फेस वॉश है एंड जनाब डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, व्हाइट एश लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है। उसके अलावा जो है ना आप लोगों के लिए लोशन भी मौजूद है व्हाइट एश का एंड आप लोगों के लिए हेयर रिमूवर लोशन भी मौजूद है जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। बहुत ही ये अच्छे से प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा जनाब ये खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी खूबसूरती हमें क्यों नहीं मिल रही, तो जरा सी बात ये है कि आप लोग अपनी खूबसूरती के पीछे भाग तो रहे हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि हमने डायरेक्शन कौन सी लेनी है। तो आपने डायरेक्शन जो लेनी है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम से है। तो बिल्कुल आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी सी नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि फुल नेचुरल जो है ना वो अज्जा से तैयार की गई है। एवोकाडो मौजूद है, मिल्क मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है और उसके साथ साथ जो है ना ये बहुत ही एक अच्छी सी नाइट क्रीम आप लोगों के लिए साबित होने वाली है जो कि आप लोगों को 5 रातों के इस्तेमाल में बहुत से भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है नाइट क्रीम है तो रात के टाइम लगाएंगे ना, और लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिएगा। अगर आप साबुन लगाने वाले लोग हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी सोप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप फेस वॉश लगाने वाले लोग हैं तो आप व्हाइट एज का फेस वॉश लगाइएगा जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है। और इसी तरीके कार को फॉलो करके अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम व्हाइट एज के प्रोडक्ट तो लगाना चाहते हैं लेकिन असांजे मतलब जो प्रोडक्ट होने को ही, हाँ अगर तव्हांजी स्किन ते जेको काफी सारा दाना आयन एक्नी आयन जिन तव्हांखे बेजार करे छॾियो आहे त उन जे लाइ तव्हांखे छा करणो आहे, तव्हांखे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल करणो आहे। ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे तव्हांजे चेहरे जा जेके एक्नी आहिनि, जेके दाणा आहिनि, दाणनि जा निशान आहिनि तव्हांजे चेहरे ते, या वरी तव्हांजे चेहरे ते कोई चोट जो निशान आहे, कोई अहिड़ो निशान आहे जेको काफ़ी पुराणो आहे, इन खे तव्हां रिमूव करणु चाहियो था, त उन जे लाइ तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अवेलेबल आहे जेको तव्हां आराम सां इज़ीली वठी तव्हां किथे बि वेंदा त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो, सिर्फ़ु तव्हांखे नालो ख़बर हुजणु घुरिजे। त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां वठी सघो था जेको फुल आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे ऐं ही जेको आहे न तव्हांजे हर स्किन टोन जे हिसाब सां तयारु थियल आहे। इहो कोई बि न आहे त बाबा अगरि असांजी स्किन सेंसिटिव आहे त असां लॻाए सघूं था, बिल्कुलु हर कोई स्किन वारो माण्हू हिन खे लॻाए सघे थो। ऐं उन खां अलावा तव्हांजे चेहरे जा दाणा हुजनि या तव्हांजे चेहरे ते कोई निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, कोई कट जो निशान आहे, कोई नंढपण जी का अहिड़ी निशानी तव्हांजे चेहरे ते मौजूदु आहे जंहिंखे तव्हां रिमूव करणु चाहियो था, त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे सघो था। ईज़ीली तव्हां हिनखे इस्तेमालु करे सघो था, राज टाइम यूज़ करे सघो था ऐं लॻाइण खां पहिरियां तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो। ऐं जनाब उन खां अलावा खोड़ माण्हू अहिड़ा असांजे आसपास हूंदा आहिनि, हिन दुनिया में पाया वेंदा आहिनि जेके बाबा कोई बि प्रोडक्ट यूज़ न आहिनि कंदा, यानी कि उन्हनि खे न नाइट क्रीम सां मतिलबु आहे, उन्हनि खे न एक्नी ट्यूब सां मतिलबु आहे, न उन्हनि खे फेस वॉश भई साबुण बि अलाए उहे माण्हू लॻाईंदा आहिनि न लॻाईंदा आहिनि। त मुंहिंजो उन्हनि माण्हुनि सां सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो सवालु आहे त बाबा तव्हां जेको आहे न तव्हां पंहिंजी स्किन सां न सफ़ा ज़्यादती करे रहिया आहियो, तव्हां पंहिंजी स्किन खे जेको आहे न सफ़ा ईअं ख़राबु करे छॾींदा, तव्हां वक़्त खां पहिरियां कुराड़ा थी वेंदा, तव्हांजी स्किन सफ़ा डल थी वेंदी, तव्हांजी स्किन सफ़ा मरी वेंदी। अगरि तव्हां पंहिंजी स्किन खे सही चवंदा आहिनि न, अगरि तव्हांजी बॉडी आहे उनखे खुराक ॾियो था त तव्हां ज़िंदा आहियो, वैसे ई तव्हांजी स्किन खुराक हूंदी आहे, तव्हां पंहिंजी स्किन खे खुराक ॾींदा तॾहिं तव्हांजी स्किन ज़िंदा रही सघे थी। अगरि तव्हां पंहिंजी स्किन खे छॾे ॾींदा त पोइ तव्हांजी स्किन सफ़ा बेरोनक थी वेंदी, मुरझाइजी वेंदी, तव्हांजे चेहरे ते रिंकल अची वेंदा, तव्हांजे चेहरे ते निशानात पइजी वेंदा ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे न सफ़ा ईअं ख़राब थी वेंदी। ऐं पोइ जॾहिं सफ़ा ख़राब थियण खां पोइ तव्हांखे होश ईंदो, तव्हां चवंदा हीउ छा कयो आहे मां पाण सां, पोइ तव्हां चवंदा त हाणे छा करणु घुरिजे, त चलो देरि अञा ताईं कोन थी आहे, तव्हां व्हाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु करे सघो था। ऐं अगरि तव्हां इहो सोचो था त नाइट क्रीम असां हणूं या न हणूं त बिल्कुलु तव्हां हणी सघो था। व्हाइट एज जी जेका ब्यूटी क्रीम आई सफ़ा सेफ आहे, तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयारु थियल आहे, फुल नेचुरल अज़ा आहिनि जनाब हिन में, त तव्हां लाज़मी ट्राए करे सघो था, ठीकु आहे। उन खां अलावा व्हाइट एज जी जेका लवली क्रीम तव्हांजे लाइ आहे बाबा, हीअ त गेम चेंजर वारो कमु कंदी तव्हांजे चेहरे ते।
अगर तव्हां गर्मी जे मौसम में कोई बि अहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइण चाहियो था जेको तव्हांजी ख़ूबसूरती खे बि मेंटेन रखे ऐं तव्हांजी अगरि बेबी स्किन आहे उनखे बि मेंटेन रखे तव्हांजे चेहरे जी हिफ़ाज़त बि करे त वाइट एश लवली क्रीम खां बहितर हिन पूरी दुनिया में तव्हांखे को बि प्रोडक्ट न मिलंदो अलाए मूंखां तव्हां लिखाए वठो ठीकु आहे सो वाइट एश जेका लवली क्रीम आहे हीअ वाइटमिन सां भरपूर आहे 30 वाइटमिन जा कैप्सूल हिन जे अंदरि मौजूदु आहिनि वाइटमिन बी अथसि वाइटमिन ई अथसि वाइटमिन सी आहे वाइटमिन डी आहे उन खां अलावा सनस्क्रीन बि एड अथसि अञा छा खपेव ज़ालिमो त वाइट एश लवली क्रीम तव्हां इस्तेमालु करे सघो था हीअ हर हिकु उन माण्हूअ जे लाइ तयारु कई वई आहे जेके माण्हू कोई कमु कनि था ऐं तव्हांजी एज बि नंढी आहे पर तव्हां कोई फेयरनेस क्रीम लॻाइणु चाहियो था मेकअप खां भॼणु चाहियो था गर्मी जो मौसम आहे त तव्हांजे लाइ वाइट एश लवली क्रीम आहे वाइट एश लवली क्रीम तव्हां फेयरनेस क्रीम आहे तव्हां लाज़मी लॻाए ॾिसजो ऐं हिन जे लाइ कोई बि एज लिमिट कोन्हे को तव्हां ॿार आहियो वॾा आहियो कुराड़ा आहियो जवान आहियो मर्द मायूं हर कोई लॻाए सघे थो तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त कंदी हिन में सनस्क्रीन मौजूदु आहे ऐं हुन खां अलावा तव्हां कोई बि जॉब कयो था तव्हां लॻाए वञो तव्हांखे शादी थी वञो था गर्मी जो मौसम आहे मेकअप नथा लॻाए सघो त तव्हां वाइट एश लवली क्रीम लॻाए सघो था एॾो ज़बरदस्त हिन जो रिज़ल्ट आहे न तव्हां लॻाईंदा त तव्हां पाण ई चवंदा आए हाय आए हाय आए हाय मज़ो अची वियो सो बिल्कुलु तव्हां ट्राए करे ॾिसो ऐं नथा मिलनि त तव्हां डायल कयो 03-15-7-99-05-95

சகோதரி. क्या बात है जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें. मैंने आप लोगों से आज सवाल पूछा कि क्या कभी आपने ऐसा किया कि किसी ने आपको कोई तोड़

0: बिल्कुल मत आके यहाँ पर मुझे भेण आई नहीं हाणे वो खणी
1: वही
0: चाहे मुखे नहीं तू बियो वठ जा सोमा हाणे जेस ताईं बियो वठ छो त आ मार्केट जेको ने थोड़ो घट वेंदी आहियां सो मां सोचां थी त मां पांज लाइ वठां त तव्हांजे लाइ बि वठंदमि ठीकु आहे एतिरी त सखी आहियां ई मां अलहमदुलिल्लाह।

ओके जी, हमारे साथ हैं ये लाड़काना की शान, लाड़काना की महान, सिंध की रानी और फारूक जैसे भाइयों के सर का ताज, मेरी शहजादी बेना सिद्रा मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर जिंदगी। आई फारूक अहमद मीरानी फ्रॉम शिकारपुर। फारूक भाईजान बड़े दिनों के बाद हमें पैनल पर नजर आए, तो क्या बात है फारूक भाईजान, आपकी वापसी पर आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में, आप बताएं आप कैसे हैं? और कहते हैं मेरी तरफ से अली रजा मुगल, इमरान अली मुगल, अली रनो मल्हा, नदीम मंगरियो, रियाज शेर को सलाम दीजिएगा। ओके फारूक भाई, और फहद एरी है सऊद एरी फ्रॉम नवाब शाह, कहते सलाम अदी शो तवाजो नाइस आए मोहब्बतों प्यारे भावन जो। और ये हमारे साथ हैं दिल रुबा, अच्छा दिल रुबा आपने गजल शेयर करिए, कहते हैं हाय आपी जान गजल है, फिर किसी याद ने है रात भर जगाया मुझको, क्या सजा दी है मोहब्बत ने खुदाया मुझको, दिन को आराम है ना रात को चैन, कभी जाने किस खाक से है कुदरत ने बनाया मुझको, दुख तो ये है कि जमाने में मिले गैर सभी जो मिला है वो मिला बनकर पराया मुझको, जब कोई भी ना रहा कंधा मेरे रोने को, घर की दीवारों ने सीने से लगाया मुझको, अब तो उम्मीदें वफा तुमसे नहीं है, कोई फिर चरागों की तरह किसी ने जलाया मुझको। वाह वाह वाह वाह, बहुत ही एक अच्छी सी गजल आपने दिल रुबा हमें शेयर कर दी, थैंक यू सो मच। अच्छा वो शायद नबील शौकत जी आवाज में गानो हो, इतरो भी गजनी ना यार।

0: ईरान विच में मुआदे से सयूं पर थी चुक्यू आज जुमे के रीजनल तशरकत कर या न कर बाबत फैसलो ना है। जीडी वेन्स तकरीब में जरूर शिरकत कद नायब सदर जीडी वेन्स चवाद सदर ट्रंप जुमे का पैरों जो मुआदो है वो जारी करे सके तो 150 फीट बदल रस्मी मुआदो है। तेहरान खिते में अमून इस्तकाम यकीनी बढ़ाई एटमी हथियार भी नठाई ईरान जंग अमरीकी साख के खत्म कर छो इसराइल के जवाल जो अमल भी तेज थी पो ईरानी कदस फोर्स के कमांडोज इस्माइल चांद शहीद शरीर दबाव वही तबाही ए संगीन हमलों बावजूद मजम्मती मोहर पोए ना हटो जैस व मुखालिफ पोए हटण से मजबूर थिया। दुनिया हिजबुल जमामूली ताकत में की आई हकीकी ताकत अजा घनी है। ईरानी फौज चाहे तो दुश्मन मुआदे की भंजकड़ी कई तो तकड़ो ए सख्त जवाब दिनों वो ईरानी फौज चाहे तो दिफा लाय तैयारी जारी है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते दे लाए 03201800003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 03005569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
4: इसी सिचुएशन में है कि आप लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या लगाएं तो आप लोगों ने क्या करना है आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए केस नाम विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयार की गई है जो कि आप लोगों के चेहरे के डार्क सर्कल्स हों जितनी भी ऐसी चीजें हों जो कि आप लोगों को अपने चेहरे पर अच्छी नहीं लगती वो रिमूव कर देता है और उसके साथ साथ आप लोगों को रिजल्ट देता है सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। तो अगर आप भी जल्दी में रिजल्ट हासिल करना चाहते हो वो रिजल्ट जो कि आप लोगों के लिए सेफ भी हो यानी कि तमाम के नुकसान भी ना पहुंचाए तो तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सको था जो फुल डॉक्टर जी निगरानी जी अंदर तैयार थे हली प्रोडक्ट आए जे मत तुम तो डॉक्टर जो ही फोटो लगल आए यानी कि तमाम जी जो टेंशन आ ना वो खत्म करने लाए तो बाबा जी प्रोडक्ट हूं वो स्किन के खराब करना है ना बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी ही तमाम जी स्किन के जो ना खराब न करी बल्कि ना सोनो बनाए चली छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जो आपकी जल्द की जो है ना वो खूबसूरती को मेंटेन करती है आपके जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में भी मदद करती है और चेहरा अगर आपका जो है ना वो खराब हो चुका है आपके चेहरे पर निशानात आ चुके हैं या फिर आपके जो आंखों के हल्के वो बढ़ चुके हैं तो भाई आपके चेहरा जो है ना वो इतना अच्छा हो जाता है आपका चेहरा ज्यादा जो है ना वो साफ हो जाता है रोशन हो जाता है दिलकश हो जाता है और आपको ये एहसास होता है कि भाई खूबसूरती में ना आपके इजाफा होता जा रहा है। अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपकी जल्द जो है वो कुदरती जो है ना वो खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाती है और आप ये महसूस करते हैं कि हम तो नेचुरली हसीन होते जा रहे हैं क्योंकि अक्सर ये जो आपके चेहरे पर डलनेस आ जाती है या आपके चेहरे पर निशानात आ जाते हैं ये चीजें जो है ना वो उसी वजह से आती है जब आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रख पाते हैं आपके चेहरे को जिन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें आप उन्हें दे ही नहीं पाते हैं तो जब आपके चेहरे को वो चीजें मिल जाएंगी जिसकी आपके चेहरे को जरूरत है नीड है तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो खूबसूरती की तरफ जाती जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे उसके साथ साथ अगर आप डी स्किन फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आप लोगों को बता दी चलूं कि एक ऐसे तरीके से तैयार किया गया है जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड है जनाब जिसको जो है ना आप अगर अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन अगर डिहाइड्रेट हो चुकी है आपके चेहरे की स्किन रूखी सूखी लगती है तो आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रहती है ग्लोइंग रहती है आपकी चेहरे की स्किन क्लीन रहती है और इतनी साफ और शफाफ लगती है कि आप खुद ही कहते हैं जनाब कि हमें तो भाई मजे आ गए हैं डी स्किन फेस वॉश के इस्तेमाल से। तो लड़के हैं लड़कियां हैं खवातीन मर्द हजरात हर कोई इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी खूबसूरती को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। जब आप डी स्किन फेस वॉश लगाते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो आप लोगों को ऐसे रिचनेस सा एहसास होता है कि वाकई ऐसा कोई अड़ो जबरदस्त प्रोडक्ट लगायूं था जो तमाम जी स्किन के जो ना सफाही या खूबसूरती सा मालामाल करे सनी हो तो लाजमी ट्राई करे ॾिस जो उनखां अलावा जेको आहे त फेस वॉश तव्हां ॾींहं में 2-3 दफ़ा लॻाए सघो था ओके जी। बाकी अगर तव्हां नाइट क्रीम लगाइण चाहियो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे राज टाइम इस्तेमाल करे सघो था। ही आहिनि प्रोडक्ट जेके तव्हां ईज़ीली अप्लाई करे सघो था तव्हांजी स्किन जे लाइ तमामु घणा सेफ आहिनि। तव्हां लॻायो बाबा पंहिंजी खूबसूरती खे वधायो उन खां अलावा जेको आहे त अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल हुजणु घुरिजनि त तव्हां हुन लाइ डायल कंदा 03-15-799-0595। ओके जो मां खां सवाल पुछो आहे त छा करें तव्हां ईअं कयो आहे त बाबा कंहिंजे चवण ते कोई अहिड़ो टोटको अप्लाई करे छॾियो जेको तव्हांजी स्किन खे नुक़सान पहुचाए चुको हुजे ऐं तव्हां इहो सोचींदा आहियो त हिन हिकु माण्हूअ ते यकीन करण जे बावजूद तव्हांजी स्किन ख़राब थी वई ऐं उन माण्हूअ खां पोइ हुनजे माण्हूअ जे टोटके खां पोइ तव्हां कंहिं बि माण्हू ते यकीन नाहियो करे सघंदा ऐं जॾहिं अहिड़ा सीन असांजी ज़िंदगी में थी वेंदा आहिनि असां कंहिंजे चवण ते का बि चीज़ कंदा आहियूं कोई बि अहिड़ो फार्मूलो लॻाईंदा आहियूं कोई बि अहिड़ी जेका न क्रीम लॻाईंदा आहियूं कुझु बि अहिड़ो लॻाईंदा आहियूं जेको असांजी स्किन जे लाइ सही साबित न थींदो आहे त पोइ असांखे न सभिनी प्रोडक्ट खां जेको आहे न इहो नफ़रत थी वेंदी आहे त न बाबा असां इहे न लॻाईंदासीं छो त तव्हांखे इहो हिकिड़ो ज़हन में चीज़ सेट थी वेंदी आहे त बाबा सभु चीज़ूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि त ईअं नाहे हूंदो जेका चीज़ तव्हांजे चेहरे ते सूट नाहे कंदी त उनजे पोयां कोई रीज़न हूंदो कोई कारण हूंदो जंहिं वजह सां उहा शइ जेका न तव्हांजे चेहरे ते रिज़ल्ट न ॾिनो हुजे त अगरि तव्हां पंहिंजे चेहरे ते अप्लाई कयो था कोई बि चीज़ त तव्हां उन चीज़ खां वाक़िफ़ हुजो त ही कहिड़े तरीक़े सां तयारु थियल आहे हीअ ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे न आहे मर्द मायूं लॻाए सघनि था न त इहे जॾहिं सभु चीज़ूं तव्हां ॾिसी वाईसी पोप वाचेस अप्लाई करना था पोई तमा के गड़ो जबरदस्त रिजल्ट मिली सके तो सो तमा लाजमी पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो आई तमा इस्तेमाल कयो जी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड जी स्किन फेस वॉश

वरी वार खोलण जी ॻाल्हि न कयो, गर्मी ॾाढी आई इहो पॉसिबल ई न आहे मुंहिंजे ख़्याल में. चले जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप कहां से हमें सुन रहे हैं. यहां पर पैनल की जाने बातें तो आके बड़े मैसेजेस जमा हो चुके हैं और जनाब हमारे साथ मौजूद नहीं चाचा खालिद जुड़े जो कहते हैं बेटा सिटो अस्सलाम वालेकुम सॉन्ग की रिक्वेस्ट है नूरजहां की आवाज में है, बिल्कुल आपको लगाते हैं ये गाना सुनाते हैं. और ये हमारे साथ है मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है, इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ है फारूक मीरानी भाई, क्या कहते हैं बेस्ट इंसान का बेस्ट शो है, वेलकम आपको दिल से माय क्वीन सिस्टर सिद्रा मुस्कान, थैंक यू सो मच प्यारे भाई जान. और ये हमारे साथ है फारूक भाई कहते हैं कि बेटा मैंने आज तक किसी के कहने पर कोई चीज यूज नहीं की है. चले अच्छी बात है, अच्छी बात है. और चाचा खालिद कहते हैं बेटा सॉन्ग ढूंढ लोगी, नहीं नहीं गाना आपका मिल गया है, इस गाने के बाद आपका गाना लगाएंगे. और हमारे साथ हैं जी ये अस्सलाम वालेकुम.

सच्चा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे. शमन जा जेके बि मतिलबु कॉपी वारा गाना आहिनि, यानी की उहो सम्झी विया हूंदा, उहे वाक़ई सुठा हूंदा आहिनि. छो त असांखे उहो वाइब ईंदी आहे न, त मज़ो ईंदो आहे. जेके 90s जा मतिलबु सॉन्ग्स जेके पसंदि हुया, जिन खे जेके उन टाइप जा गाना पसंदि कंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ. भई हाणे वाह घुरे न घुले, पर फ़र्क़ु पवे थो हिन ॻाल्हि खां. ज़रूरी आहे. अरीबा हमारे साथ कहती हूँ, आपी गाना तो लगाएं, गानो हलायूं था बाबा तांजो काडे वींदासी. और ये हमारे साथ फारूक भाई कहते, मेरी शहजादी बहना, ये मंजू सकरानी का गाना तो लगाइएगा. बिल्कुल बिल्कुल भाजले गानो हलाईंदासी. और ये मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा भाजी, हमारी सारी फैमिली आपका प्रोग्राम सुन रही है, बहुत शुक्रिया. आपने नाम तो लिखा ही नहीं अपना, तो खुश आमदीद कहते हैं. वोट हाची गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए भाषा से मौजूद आए कुर्बान बात तांजो मोहब्बतू आए. और ये हमारे साथ है शेर अली, फरहान अली जमाली, नवाब शाह से प्लीज प्ले नजफ अली. ओके अच्छा, इरम कहती है, अच्छा मेरी दिलबर दोस्त आप, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा ये मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा बाजी, हमारी सारी फैमिली आपका शो सुन रही है. शहबाज जमाली वलद मिस्री जमाली नवाब शाह, चलें शहबाज भाई आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ हैं. और आपका मैसेज ये जो ना अभी मुझे पूरा होकर मिला है, और आपने एक ही मैसेज को बहुत मरतबा कॉपी पेस्ट कर दिया है, सो थैंक यू सो मच. पैनल पर जो ना सिर्फ आप एक मरतबा मैसेज कर दिया करें.

चलिए जी, बहुत ही प्यारा गाना जो कि शमन की आवाज में हमने सुना। एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि मैडम नूरजहां की आवाज में होने वाला है, तो ये गाना भी हम सुनेंगे। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है अल्ताफ बलो, जाग जानी चाचू, कहते हैं प्लीज प्ले अनवर विस्तरो, नकेद करो मेकू, डेडिकेट अजरा कोसो, जोयो बलोच एंड यू। ओके ओके, आई ट्राई। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं मुझे बताइए। जैसे अब्दुल्ला महर भाईजान मुझे बता रहे हैं कि बाजी मैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल भाईजान, इस्तेमाल कीजिए, थैंक यू। और हमारे साथ इरम कहती आप ही आपकी नहीं, वो पड़ोस में तो नहीं है लेकिन उसके मियाँ इतने अच्छे हैं कि वो जब भी कहती है उसको तो वो लेकर आती हैं उसके मायके। आजकल तो वो खैर जो वो बहुत कम आती हैं, और फिर वो कम आते हैं तो उसके बच्चों की बड़ी याद आती है। तो ये है, जैसे उनकी फैमिली बढ़ती जा रही है तो वो वैसे ही अब मायके आना जो ना उसने कम कर दिया है, तो पता नहीं भाई वो अपनी जिंदगी में गुम होती जा रही है। तो दुआ किया करें उसके लिए और उसके बच्चों के लिए। और प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं पाक आर्मी से आप हमारे साथ हैं। स्वीट शो, प्लीज रहमान मुगल का कोई भी गाना लगाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ जी।

अच्छा ये गाना पता नहीं क्यों इतना जल्दी खत्म हो गया, मैं वरी सोच रही थी कि ये गाना आपको एंजॉय करने देते हैं, चलिए ये गाना था ही खैर इतना, और इसके साथ साथ ये गाना मैंने लगा लिया है, टाइम हमारे पास आके थोड़ा सा बचा है, मैं वरी इंतजार कर रही थी कि भाई हम ब्रेक की जानेब जाएंगे तो सुकून से आपको गाना सुनने देते हैं। और आजकल जो है आजकल ना जाने क्या हुआ मुझे

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385569 0300-003-8569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर 0301-386-5453।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड रंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।
9: हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दे।
10: जाओ जी सब तैयार ये घराना है शाहकार।

पास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुमा बहुत ही खबीस खातून थी। प्यार परिंदा क्लिनिक बंद रहंदी।

सिर्फ भी सहाय बो बाबा बस निभा जरूरी है समझो था अच्छा कंडीशंस क्या हैं ये नहीं जान रहे बस ये जान रहे हैं कि भाईजान आप इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम समझ रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो डायल कीजिए 03-15-799-0595 जल्दी जल्दी से ना ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके गोठ में भी ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये अवेलेबल होने चाहिए और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा नंबर के ऊपर तो आप मुझे बताइए ना हम शिकायत लगाएंगे आप लोगों की समझ रहे हैं और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिएगा भाई एनो जबरदस्त प्रोडक्ट आना अगर तुम एक दफा इस्तेमाल करे दिसना ना पूछना वाह वाह सिद्रा पाटी सफा सही पी चाहिए सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका विटामिन ई बीट्स ए माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार थेला है जें जे इस्तेमाल सा तमा जी खूबसूरती जेका है ना अन्या वदंदी वेंदी तमा जी चेहरे जी खूबसूरती जेका किथे गुम थी वई है तो वा तमा के वापस मिली वेंदी ए तमा जी चेहरे ते निशान आहेन एकनी प्रॉब्लम आहे जेके भी मसला है नो सब खत्म थी वेला ए तमा जी स्किन थी वेंदी गोरी चिट्टी ओके जी सो जरूर तुम ट्राई करी दिसो जे तुम्हें सफा वीआईपी रिजल्ट मिले समझो था उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन फेस वॉश भी मिली रो है जो तुम किथा भी वही पाने करीबी जनरल स्टोर तुम परचेज कर सो हाँ तो हर जगह अवेलेबल थी वाया ही प्रोडक्ट तो तुम लाजमी अवेलेबल थे तो उतना वही परचेज क्योंकि ना अवेलेबल तो नंबर से लाजमी डायल कर रबो कर ठीक है उन्होंने दसो तो तुम किथा बुध पाया प्रोग्राम किथे किथे ही प्रोडक्ट अं अवेलेबल नके सो प्रोग्राम जो लास्ट लिंक है लास्ट लिंक में अस प्यारा मानू मतलब इंतजार कन प्या जकी बेचारा शुरू का वठी सुबह का वठी बैठा है सानो गानो हलनो तो बिल्कुल सबनी जो गानो हलाइंदा सी बाबा मुझे यह कोशिश होंगी तो सभी जो सॉन्ग्स ट्राई लगाऊँ लिस्ट में सभी जो गाना बुधों सब ना हैप्पी हैप्पी रहो इंजॉय कर जिंदगी के तो सभी जो गाना अस बुधंदी सो एक बो गानो है जो असि लिस्ट में मौजूद है जो शायद बबर की आवाज में थियणवारो है शायद बबर की आवाज में ही वो सॉन्ग बिलाल फरमाइश कई शायद असें

0: अच्छा मूं ने छा कयो मूं पोस्ट के जेको ने रिफ्रेश कयो रिफ्रेश करने जी वजह से खोड़ ताजा जेके कमेंट आना मथे भजी गया तो जेके लगे तो ही मुझो इंपॉर्टेंट मैसेज जेको बारी सदरा कौन पढ़ो आए तो ता काइंडली मेहरबानी करी मुके वराए ता शेयर करे छजो जेसा वो प्रोग्राम में ऐड करे सकूं समझो था आई उनका अलावा ता पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो था मोहम्मद समान कहते चाप एक दिन ऐसा हुआ था मेरे दोस्त के कहने पर मुल्तानी मिट्टी फेस पर अप्लाई कर ली थी फिर घर के सारे फर्द डर गए और इतने डरे कि अब तक घर वालों के प्यार से महरूम रहा हूँ। भाई मुल्तानी मिट्टी मेरे फेस पर भी सूट नहीं करती है, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो फेस के ऊपर अच्छी होती है। ये कुछ गिने चुने लोग ही जिनके चेहरे पर वाकई रिजल्ट देती हूँ, लेकिन ज्यादा लोगों के चेहरे पर नहीं देती है। तो इसका मैं भी कुछ लोगों को ये नहीं कहूंगी कि भैया लगाए अच्छी चीजें, ना बाबा ना लगाए, मुंह ते असर कौन करे, बाकी चेहरे अगर करे थी तो पो तां करे सको था, पर सुठो यो आए तो तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राई करे दे जो समझो था।
1: खता पयो जाने खुदा तोखे सिर जो साईं कयो मुजो डोहो इहोई होयो।
0: अच्छा वो बियो गानो, चलो मां भी समझा पे तो बियो गानो हो, तो पर अगर मु यो लिखी करे जेको ता लिखियो ना वो सागो लिखी करे मां YouTube करियो ना तो उन मुखे हे वारो गानो कढी दनो, सो मां ही वारो हलाए छियो। मुखे लगो मता शायद मां मुजो दिमाग थोड़ो गलत सोचिनो जो, पर तवा मिस सही था चो त आइंदा तवा मुखे जगा ना लिंक शेयर करे छडींदा कयो। उन खा अलावा सनावला बिरोई हमारे साथ ही और कहते हैं आपका शो पहले साइलेंट होकर रेडियो पर सुन रहा था, अब कमेंट करके शामिल भी हो रहा हूं। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो में वेलकम करते हैं आपको जनाब, हम भी आपको दिल से वेलकम करते हैं। और चाचा खालिद आपने हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। मुजाहिद बोजार कहते हैं जादू भरी तेरी नजर, अज ताजे गाने के जगह ना थोड़ी मोकल कराई से। अशफाक खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। आकाश अली हमारा शो सुन रहे हैं, भाईजान को वेलकम करते हैं।

0: खता।
1: अच्छा ये गाना भी बहुत अच्छा है वाकई। ओके जी, हमारे साथ है फजीला सिंधी। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं प्यारी को। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। कहते हैं सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब सुनने वाली लड़कियों को। ओके जी,

और फजीला आपका जो ये जे वर्ड वाला मैसेज, ये मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं आप क्या कह रही हैं। और हमारे साथ मौजूद दीदी हमारी प्यारी लुबी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सजो जानी, क्या हाल है, मैं भी आके साथ साथ हूँ। तमाम बेहतरीन शो और नाइस सिंधी सॉन्ग, और सजो कोई भी सॉन्ग मेरे नाम तो करो, हाजिर हाजिर बाबा। और कहती हैं भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी आवाज, हाँ लोग कह रहे हैं मेरी आवाज चेंज हो गई, और मैं मानती हूँ मेरी आवाज चेंज हो गई, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि मोटी हो गई, कुछ कह रहे हैं पतली हो गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, कुछ तो हुआ है, ये तो मैं भी जानती हूँ। चलें अच्छा है या बुरा ये तो आप ही बताइए। बस अब जो है सो है, कुछ चीजें वाकई ऐसी होती ना जिनके ऊपर हमारा अख्तियार नहीं होता, और वो हो जाती तो बस हो ही जाती है। तो ये मेरी आवाज है जिसके ऊपर मुझे नहीं पता कि ये मैं ऐसे चेंज खुद करती हूँ, खुद नहीं करती नहीं हूँ बल्कि ये हो जाती है। तो ये जो है ना वो बस ठीक है, आप रहने दें इस बात को। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं, सही है वो गाल का फायदे जी।

अच्छा शहबाज जमाली नवाब शाह से भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जुलरी का खालिक लाशारी कहते हैं, अंबर का मिठी यदि चाय पिया पयो शो भी बुधा पयो सलाम कुर्बान खास के लिए ओके प्यारा भा मोहब्बत हूं तमाम जो जाग जानी चाचू हमारे साथ हैं और आपने सेकंड गाने की फरमाइश करी, यहाँ पर पहला गाना नहीं आपका प्ले हुआ बहुत शुक्रिया। और आपने डेडिकेट किया है डॉक्टर नजमा तबस्सुम डॉक्टर समीना आमिर ओके जी। और इमरान भाई कहते हैं कि बाजी जमाने वारा छा भी चवन असा तवां जी मर्जी हलाईंदा सी बिल्कुल तवां मुंजी मर्जी हलायो तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो मां तांखे कने भी गलत मशरो न ॾींदा इहो तव्हां भले मूंखां लिखाए वेठो। अगरि मां तव्हांजी स्किन जी जेको आहे न फिकर कयां थी त तव्हांखे बि थोरो पंहिंजे चहिरे जो ख़्यालु करणु घुरिजे ऐं तव्हांखे जेके प्रोडक्ट ॿुधाया वञनि था उन्हनि खे थोरो तव्हां ट्राए करे ॾिसो, ट्राए कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी न त वाक़ई ही प्रोडक्ट कम जा आहे, सो तव्हां ट्राए करे ॾिसो ओके जी। उनखां अलावा सजाद अली जमाली हमारे साथ ही नवाब शाह से कहते सॉन्ग लगाइए ममताज मुलाई का, ममताज मुलाई जरा छुट्टियों पर गए हैं। अच्छा शहबाज जमाली भाई आपने गाना लिखा है, चले मैं कोशिश करूंगी आपका गाना लगा दे। ओके जी काशिफ अली जमाली हमारे साथ हैं, काशिफ भाई आपको वेलकम कर देते हैं। चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन वारन जो शैम्पू भी अवेलेबल आहे नन सिर्फ फेस वॉश ऐं क्रीम आहे बस द प्रोडक्ट, अगर तव्हां इहे लॻाईंदा सुठो रिस्पॉन्स उन्हनि खे मिलंदो त पोइ फेस वॉश त आहे पर उन सां गॾु जेको ॿिया प्रोडक्ट जेके तव्हांखे नीड आहे उहे सभु

अच्छा मैं खुद ही सोच रही थी ये वाला गाना जो है वो इतना मतलब अच्छा है, इसके अंदर म्यूजिक इतना प्यारा है, लेकिन ये वाला थोड़ा लाइट वर्जन है, तो मैं खुद ही सोच रही थी कि वो वाला लगाती तो अच्छा था, लेकिन मैंने जब देखा तो कुरतलेन की आवाज में यही वाला गाना मुझे मिला, तो फिर मैंने ये वाला लगा लिया। मतलब काफी एक अरसा हुआ है एक ऐसा इंसान जो कि मतलब इतने गाने सुनता था, मैं इतने गाने सुनती थी, मतलब कितने ही पुराने गाने आ क्यों ना देख लें, कितने नए वाले गाने क्यों ना, मैंने सारे गाने सुने हुए थे, लेकिन आजकल एक ऐसी ही मेरी जो है ना वो फितरत हो चुकी, मेरा एक ऐसा मिजाज हो चुका है कि मैं गानों से इतना दूर भाग रही हूँ, मैं शो में गाने लगाती हूँ, गाने आप लोगों के साथ सुनती हूँ, अदरवाइज मेरी जिंदगी में गानों का कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो ये है कि मुझे नहीं आजकल गानों की समझ आ रही, जो बस आप बोलते हैं वो मैं लगा लेती हूँ, ये चीज है। अच्छा किशोर भाई कहते हैं यदि मुझी कंपनी से बिल्कुल सामू लाड़काने जो बस ईंदो आहे, यकीन कयो सुबुह कंपनी अचान थो बस ॾिसी तू याद ईंदो आहे, 5 बजे वापसि वञा थो तॾहिं बि तू यादि अची थो, हाणे अदा बस हटायां या कंपनी छॾियां, तव्हां कुझु बि न कयो यादि अचां थो, सुठी ॻाल्हि आहे, निभाने तव्हां रोज़ प्रोग्राम में अचो था।

0: क्या बात है जी, प्यारा गाना और अरशद मरी हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों के बाद, बिल्कुल जी, बहुत अरसे के बाद आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको वेलकम करते हैं। ओके जी,
1: तू मर जाए।
0: अच्छा, इस गाने की फरमाइश थी, ये बहुत प्यारा गाना है।

0: अच्छा बिलाल लिखते हैं कि हॉस्पिटल भी ससुराल की तरह है, जहां ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ससुराल जाने के लिए तो लोग मेरे ख्याल में एक्साइटेड होते हैं। राशिद खोड़ो कहते हैं कि फुर्सत मिले औरों से निगाह इधर भी कर लेना, हम भी तेरे
1: ख्वाहिश तो
0: है। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू राशिद भाई जान। और एम कहते हैं हाँ सही है, समझ गए। और इमदाद अली बलोच हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम इमदाद भाई, कैसे हैं आप? अच्छा राशिद भाई कहते हैं कि अरे आपकी आवाज चेंज नहीं हुई है, कौन कह रहा है आपकी आवाज मोटी हो गई है? नहीं, कुछ कहते हैं लोग जो आते हैं बड़े दिनों के बाद सुनते हैं, मुझे लगता है चेंज तो हुई है लेकिन अब मोटी हुई है पतली है ये मैं नहीं जानती। चलें कुछ तो हुआ है, खैर जो भी हुआ है सही है, इंसान जैसे बड़ा होता जाता है तो जाहिर सी बात है।

बहुत ही प्यारा गाना आप सुन रहे हैं। और किशोर भाई ने एक शायरी भेजी है, लिखते हैं कि एक रात एक बात लिखूंगा, एक रात एक बात लिखूंगा, तुझे मेरे साथ लिखूंगा, बड़ा सा चांद और ठंडी हवाएं, फिर तेरे हाथ में अपना हाथ लिखूंगा, हकीकत में तू कभी मिलेगा या नहीं, एक किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा, मेरी किताब में सब मेरी मर्जी का

0: पहले।
1: हाँ अनवर भाई सही था चोवे से। माँ नंढपण में सोची थी हम तो माँ वॾी थी जल्दी वॾी थी मैंने बहुत कुछ करना है, लेकिन अब जब बड़ी हुई हूँ तो कहती हूँ कि भाई नंढड़ा भला होया सी। जिम्मेदारियों ने जो है ना वो इतना मतलब उदास कर दिया है। जिंदगी ऐसे चल रही है कि भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या है लाइफ में, क्या थे क्या हो गए हैं। लेकिन सही है भाई, हर चीज में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। और अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ यहाँ पर टाइम हो चुका है कि आप लोगों से हम इजाजत लें। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी जो मुलाकात है वो कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है प्रोग्राम में। सो अपना इन्ना शाला ख्याल रखिएगा, और कहीं पर कोई गलती हो गई है तो हम माजरत ख्वाहें। कोई भी ऐसा लफ्ज़ कह दिया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए माजरत कर देते हैं। सो जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप इस्तेमाल करते रहिएगा, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए। और बिल्कुल आपका हमारा साथ यहीं तक का। सो मुकलानी ना ही बाबू सिंह, सलामत साथ सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वकार वधियो आहे। पाकिस्तान वॾी सफ़ारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चवैत पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम वेंदो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी तरफ़ सां गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवनाई मनसूबे वक़्तु इजलास। वज़ीर आज़म शमसी तवनाई मनसूबो जल्द मुकमल करण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त जीपी लाइ शमसी मनसूबो जो समूरो ख़र्च वफ़ाक़ी हुकूमत बर्दाश्त कंदी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात। मुल्क जी सियासी अमन अमान ऐं मुआशी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि पारां अमरीका ईरान मुआहिदो खिते लाइ बहितरीन करार। हाफिज़ नईम चयो त ईरान अमरीका मुआहिदे लाइ पाकिस्तान जो किरदार हमेशा यादि रखियो वेंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त खिते में छिकताण जे ख़ात्मे जो क्रेडिट पाकिस्तान जो आहे। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल खिते जे अमन लाइ न विसरण जोॻो किरदार अदा कयो।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-03-00-33-8569।

0: के सर्टिफाइड एस
1: सिर्फ जियो पर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 553 69।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आपने हमें बताना है। ये बताने के लिए डायल करना है 03136615688 और SMS के लिए तरीकेकार है, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखना है, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। आपकी कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। कुछ कर रहे हो प्यार?
0: जी अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहा है? अदा वेलकम कहेंगे आपको, क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? अच्छा

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: घुसियल माली साल की भेट में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपये के कट लगाया वो। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपये में घटाए 720 अरब रुपया करने की तजवीज। निच सूबाई तरक्याती बजट 520 अरब रुपये में घटाए 385 अरब रुपया करने की तजवीज डी वही। जिले तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपये जो कट लग नए माली साल में जिले तरक्याती प्रोग्राम लाए रुगो 15 अरब रुपया रखने की तजवीज डी वही। सूबे जो गैर तरक्याती बजट 2560 अरब रुपया रखने की तजवीज। नए माली साल तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करण जो फैसलो। सूबाई ए जिले सतह से हलंदड़ 3642 रिथान लाए 400 अरब रुपया रखने की तजवीज। वफाकी हुकूमत पारा 64 अरब रुपये की तरक्याती ग्रांट मिलने जो काथो लगाया वो है। आलमी मालियाती इदारन का तरक्याती मनसूबों लाइ मिल पैसों की मद में 256 अरब रुपया मिलने जो अंदाजो लगाया वो। सिंध के नए माली साल की बजट में मकानी खाते ए कराची की मेगा प्रोजेक्ट्स लाए 99.76 अरब रुपया रखने की तजवीज। ट्रांसपोर्ट खाते लाए 7.94 अरब रुपया तरक्याती बजट रखने की तजवीज। सेहत खाते लाए 17.43 अरब ए तालीम खाते लाए 25.86 अरब रुपया रखने की तजवीज। आबाशी खाते लाए 3.80 अरब वक्स ए सर्विस खाते लाए 31.89 अरब रुपया रखने की तजवीज। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाए 40.86 अरब रुपया रखने की तजवीज। सिंध नए माली साल लाए 2026-27 की बजट सुभाणे सिंध असेंबली में पेश थी। वो वजीर मुराद अली शाह बजट पेश कर। अमरीका न हुए हा तो इसराइल जो वजूद भी न हुए हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश कई जहनम भरपा कर छड़ींदी। अमरीकी सदर ट्रंप के कतरी अमीर तमीम बिन हमदसानी से मुलाकात दौरान गाल बोल। सदर ट्रंप चो तो अमरीका जो ईरान से कल मुहिदो तेहरान के एटमी हथियार ढो भित बनल है। ईरान से थियल मुहिदो इंसाफ से बदल है। रिजीम चेन से को भी फायदो ना थो। ईरानी क्यादत मकतूल है। लबनान जंग मामूल तकरार है। अमरीका ईरान में का भी सणपकारी न कंदो। लबनान से इसराइली कब्जो जारी रहो तो अमरीका से थियल मुआदो खतरे में पैजी सके तो। लबनान से इसराइली हमलो या कब्जो मुआदे की भंज कड़ी होंद। ईरानी परदे वजीर अब्बास राखची चवाए तो अमरीका ईरान विच में गालियों जो नो दौर जुमे का स्विट्जरलैंड में शुरू थो। मुआदे के हतमी शक्ल देने लाए सालसी टीमों इंदड़ हफ्ते इजलास कंदियों। शुरुआती मुआदे से बाजाबता तौर से अमल की शुरुआत जुमे का थन्दी। ईरान ए अमरीका में मुआदे से पाकिस्तान जो दुनिया में वकार वध्यो है। पाकिस्तान वड़ी सफारती कामयाबी मानी है। कौमी असेंबली में खिताब कंदे दिफा बारे वजीर ख्वाजा आसिफ चवायत पार्लियामेंट में बिना सबूतन के इल्जाम से अवाम वट गलत पैगाम वेंदो। वजीर आजम फील्ड मार्शल नामुमकिन के मुमकिन कर डिखारो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत हेठ गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे बाबत इजलास। वजीर आजम ने शमसी तवानाई मनसूबो जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चो तो जीबी लाए शमसी मनसूबे जो समूरो खर्च बर्दाश्त कंदी। अमन अमान बरकरार रखने में आलमन जो अहम किरदार है। आलम कौम के मुतहद रखने में भी अहम किरदार अदा कर सकन था। कौमी पैगाम अमन कमेटी के खिताब कंदे वफाकी घरू वजीर मौसम नकवी चवाए दहशतगर्दी के खात्मे लाए सभी के मुतहद थियण पवंद। इन फोरम जरिए भी मुल्क में अमन जो पैगाम मनण घुर्जे।
0: अब आप सुनेंगे
2: खुशखबरी। हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-00-33-8555-69।
3: इरशाद ऑटोज़ ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03208-00003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

अच्छा जी, आपने बताना है वो कौन सी जगह है जहाँ साल में 13 महीने होते हैं। इस वक्त वहाँ 2016 चल रहा है, हमारे यहाँ 2026 है, जबकि उनके यहाँ साल 2016 चल रहा है। आपको मालूम है उस कंट्री का, उस जगह का नाम, उस

0: लकीर खींच दी, जिसके बाद सबने देख लिया। अब पहली वाली लकीर जो है उस लकीर के मुकाबले में छोटी नजर आ रही है। उस्ताद ने कहा, इस लकीर को हाथ लगाए बगैर इसे मैंने छोटा कर दिया है। तो तालिब इल्मों ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ये सबक सीखा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, दूसरों पर तनकीद किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे आगे बढ़ने का हुनर उन्होंने चंद ही मिनट में सीख लिया। कि अपने आप को इखलाक में, किरदार में, अमल में दूसरे से आगे बढ़ा लो, तुम खुद ब खुद दूसरों से बड़े नजर आने लग जाओगे। और इसके लिए तुम्हें जो है किसी के साथ भी नेगेटिवली बिहेव नहीं करना पड़ेगा। अजना वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामईन को जी एम प्रखास FM 88 के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम ऑन एयर है सब दोस्त, हमारे आर प्रोग्राम के एंडिंग मराहिल हैं। आज मैंने आपसे पूछा कि अगर आपका कोई बहुत ही प्यारा, बहुत ही करीबी आपसे झूठ बोल रहा हो जबकि आप सच जानते हो, आपको मालूम है कि ये बंदा या बंदी तक पहुंची है और कुछ और कॉलर्स भी शामिल प्रोग्राम कर लें, उसके बाद हमने आपसे इजाजत लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा
1: है?
0: अस्मा, क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, अगर कोई झूठ बोलता हो तो हम उससे एतबार ही टूट जाएगा।
0: अच्छा, उससे जो है आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया अस्मा, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, फॉलो किया, थैंक यू। आप शाम में प्रोग्राम हुई, क्या कहेंगी सब सुनने वालों से?
1: बस यही कहूँगी, हमेशा सच बोलना चाहिए, अल्लाह ताला भी सच बोलते खुश होता है।
0: चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जनाब अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि मौजूद कॉल पर थी, और नेक्स्ट कॉलर को भी मौका देते हैं उनकी राय के लिए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, सवाल का जवाब हो गया?
0: जी हाँ, सवाल का जवाब हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, यही दुरुस्त आंसर है। अदा कौन बात कर रहा है? चलें, बहुत शुक्रिया, आंसर राइट है।
2: सफर चैनल वाले हैं ना, वो आपके सवाल हो गया था, किसी जवाब दिया नहीं, दिया नहीं पता था।
0: हाँ जी, नहीं ये ये ये यही आंसर है। चलें, बहुत शुक्रिया अदा, थैंक यू,
2: थैंक यू।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और जनाब मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा हो, आपको हकीकत मालूम हो, आपका रिएक्शन क्या होगा? नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम,
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है?
3: रुस्तम अली कुमार बात कर रहा हूँ, गोतपुनू खान पावर से।
0: अदा क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में?
3: टॉपिक के बारे में ये कहूँगा कि वो दुखी होगा, फिर क्या होगा।
0: अच्छा, आप उस बंदे पे यकीन कर लेंगे झूठ कह रहा होगा जो आपसे?

0: समझाऊंगी कि अगर वो कोई झूठ बोल रहा है तो हमें उसकी वजह जाननी चाहिए,
1: कि वो
0: क्योंकि हम भी तो हो सकते हैं किसी को झूठ बोलने की वजह, हम भी तो किसी वजह से ही झूठ बोलते हैं ना।
1: अच्छा, फिर अगर वजह जानने के बाद दोबारा ऐसा हो, तीसरी बार भी ऐसा हो, चौथी बार भी, हर बार आप वजह जानेंगे?
0: जी, जो मेरे अजीज है वो मुझे सच्चाई बताएंगे।
1: ठीक है,
0: क्योंकि किसी को भी हम दिल के पास रखते हैं तो उसकी सारी सच्चाई होती है ना, जैसे बेस्ट फ्रेंड होता है।
1: अच्छा, फिर दूसरी बार भी वो ऐसी झूठ बोले आपसे, आपकी बेस्ट फ्रेंड, फिर आप क्या करेंगी, दोबारा सच्चाई जानेंगी?
0: जी, तीन बार बंदे को मौका देना चाहिए ना।
1: वो पांच बार यही बारे यही वाले काम करे उसने, वो जब जब मुंह खोलती है झूठी बोलती है।
0: नहीं, मेरे फ्रेंड ऐसा नहीं करते।
1: नहीं, वो कर रही है, आपको नहीं पता।
0: फिर उससे बोलेंगे कि हमारी जिंदगी से चला जाए।
1: ओ माय गॉड, ये तो बड़ा ही आपने कड़ा फैसला कर लिया। हाय अल्लाह, ये तो जुल्म होगा आपकी दोस्त के साथ। चलो बहुत चले, दोनों को थैंक यू कहिएगा चंदा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
0: सवाल क्या था कि एक मुल्क में तेरह होते हैं तो उसका नाम क्या है, तेरह महीने का?
1: एथोपिया।
0: तेरहवें
1: महीने का नाम तो मैंने नहीं सर्च किया, नेक्स्ट मैं चेक करके बताऊंगी, लेकिन उस मुल्क का नाम एथोपिया है। ठीक है,
0: ठीक है, मेरा सॉन्ग प्ले करेंगे?
1: अभी दो मिनट रह गए, कौन सा वाला सॉन्ग है आपका?
0: खुदा देख रहा है।
1: चलें, कोशिश करती हूँ, दो मिनट रह गए चंदा, अगर प्ले कर सकी तो कर दूंगी। ठीक है
0: जी, कर दीजिएगा, मैं रोज आपका सॉन्ग सुनती हूँ, भाई ने आज ही मोबाइल दिया 5 मिनट के लिए।
1: चलो, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अकबर, मेरी लिसनर माशाल्लाह। अच्छा, खवातीन बिचारी, कहना नहीं चाहिए, माजत के साथ बोलती बहुत हैं, अब वो इतना बिचारी शौक से सुनती हैं तो उनको तो हक है ना बोलने का। देखिए, डिफरेंट लोग की डिफरेंट राय है, सबकी राय सेम नहीं हो सकती। कोई कह रहा है कि खैर है बोला है तो ठीक है, कोई कह रहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये वक्तन फवक्तन जो हमारी राय चेंज होती रहती है, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपने तरीकेकार होते हैं।

एक फल बेचने वाले से पूछा इस अंगूर के गुच्छे की कीमत क्या है, बोला 120 रुपए किलो। पास ही अलग कुछ मुख्तलिफ टूटे हुए अंगूरों के दाने भी पड़े हुए थे, उसका भाव क्या है, वो कहने लगा 45 रुपए किलो। मैंने पूछा इतना कम दाम क्यों है, तो ये भी बहुत उम्दा। लेकिन उस वक्त ये बात माइंड में आई कि ये गुच्छे से टूट गए हैं और वाकई अपने खानदान से अलग होने पर हमारी कीमत भी आधी से भी कम रह जाती है। वाकईतन इत्तेहाद और इत्तेफाक में ताकत है। इत्तेहाद जब मिट्टी ने किया तो ईंट बन गई, ईंटों ने किया दीवार बन गई, दीवार ने किया घर बना। ये बेजान चीजें जब ये हो सकती हैं तो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। थिंक अबाउट इट।

अमरीका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहन बर्पा करे छॾींदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी कतरी अमीर तमीम बिन हमद अलसानी सां मुलाकात दौरान ॻाल्हि ॿोल। सदर ट्रंप चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो, रिजीम चेंज सां फ़ाइदो न थींदो। ईरानी क़यादत माक़ूल आहे, लबनान जंग मामूली रक़रार आहे। इसराइल खे लबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। अमरीका ईरान में का बि सीड़पकारी न कंदो। लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल माहिदो खतरे में पइजी सघे थो। लबनान ते इसराइली हमिलो या कब्ज़ो माहिदे जी भजखड़ी हूंदो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्शी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। माहिदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ सालिसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती माहिदे ते बाज़ाब्ता तौर अमल जी शुरूआति जुमे खां थींदी।

0: ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वक़ार वधियो आहे। पाकिस्तान वॾी सिफारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम ईंदो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे बाबति इजलास। वज़ीर आज़म जी शमसी तवानाई मनसूबो जल्द मुकमल करण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त जी बी लाइ शमसी मनसूबे जो समूरो ख़र्चु वफ़ाक़ी हुकूमत बर्दाश्त कंदी। अमन अमान बरकरार रखण में आलमनि जो अहम किरदार आहे। आलम क़ौम खे भी अहम किरदार अदा करे सघनि था। क़ौमी पैगाम अमन कमेटी खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ सभिनी खे मुतहिद थियणो पवंदो। हिन फोरम ज़रिए बि मुल्क में अमन जो पैगाम वञणु घुर्जे। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि वसीलनि में वाद ऐं टैक्स उगड़ण बाबति इजलास। एक्साइज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐं नाणे खाते जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। मुराद अली शाह पारां टैक्स उगड़ण पर निज़ाम वधीक सराइतो बणाइण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो त वसीलनि में वाद अवामी फलाह, तरक़ियाती मनसूबनि ऐं बहितर ख़िदमतनि जी फराहमी लाइ अणतर आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में तोहीन अदालत केस जी ॿुधणी। कमीशन जो चेयरमैन सेक्रेटरी ऐं कंट्रोलर अदालत में पेश। टिन्ही आफ़िसरनि अदालत खे आगाही ॾींदे चयो त दरख़्वास्त गुज़ार जो इंटरव्यू वठण लाइ तयार आहियूं, पर ख़ुसूसी कोटा ते जायूं घटि आहिनि। ख़ाली जायुनि बाबति फ़ैसिलो करणु हुकूमत जो इख़्तियार आहे। अदालत जी दरख़्वास्त गुज़ार खां इम्तिहान वठण जी हिदायत। हुकूमत खे ख़ुसूसी माण्हुनि जी पोस्टनि बाबति कोटा ते नज़रसानी करण जो हुकुम।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बहितरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301386545।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाय फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो।

0: Name to be trusted.
1: Tia, Tia, Silver Ja Chon, Reti, Kresh, and Rangvaka Bariya Dastyab Ahin.
0: Hanon Iron Store, Nas Baloch Petrol Pump.
1: Tilai Proprietor Group 3204372 and 0242460100.
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वाह मत
2: न तो छन में
0: जी बरोबर एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराने ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक जिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजे एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: की है सुनते रहो जी FM 94

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।

0: तेल जेको आहे सो मशहूरु हूंदो आहे. हिन में जैतून जे तेल में ॿ क़िस्म जा तेल ईंदा आहिनि. हिकिड़ो ईंदो आहे मालिश जे हवाले सां जेको, ऐं ॿियो ईंदो आहे यानी पीअण जे हवाले सां. पीअण जे हवाले सां तव्हां कंहिंखे बि कंहिं सुठे मेडिकल स्टोर वारे खे या पनसार वटि वेंदो या कंहिं वॾे सुपर जनरल स्टोर में,
1: पीअण मतिलबु खाइण में, खाधे पीते में,
0: खाधे पीते में इस्तेमालु कजे थो. एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल उनखे चइबो आहे, एक्स्ट्रा वर्जन ओले ऑयल. ॿाहिरिनि मुल्कनि जा बि अचनि था असां वटि, जा पाकिस्तान जा बि अचनि था. कहिड़ो बि मिली वञे त वधीक उहो बहितरु आहे. एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल जे नाले सां, यानी जेको पीअण जो या खाइण जो तेल इस्तेमालु कबो आहे, उहो चमचो हिकिड़ो ऐं चमचो सिंधी माखी जो चमचो जेको आहे सो लीमे जे रस जो, इहे तव्हां पाणी में जेको आहे सो नीम गरम पाणी में विझी करे ऐं इस्तेमालु कराईंदो पेशेंट खे, त अलाह ताला जी महिरबानी सां चाहे किडनी स्टोन आहे चाहे गाल ब्लडर स्टोन आहे उहा जेको आहे सो बिल्कुलु ख़तमु थी वञे थी.
1: तमामु बहितरीन सामिन खे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 तव्हांजी ख़िदमत में लाइव पेश कयो पियो वञे. डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे, जेको मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहियो आहे. डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. डॉक्टर साहिबु तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानियूं. डॉक्टर साहिबु अवां आख़िर में असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा साईं?
0: जी सर बिल्कुलु, काल जे तरफ़
1: हा काल हिकिड़ी शामिलु कंदा हलूं था. पहिरीं ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो, पर ही बि मिसकाल थी चुकी आहे. तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा?
0: जेको आहे सो पैगाम इहो ई हूंदो आहे त 5 वक़्त जी निमाज़ जी पाबंदी ज़रूरी आहे. सदिको ज़रूरु ॾींदा कयो ऐं सदिके सां जेको आहे सो हर बीमारी हर तकलीफ़ दूरि थिए थी. ऐं उनखां अलावा जेके बीमार आहिनि उन्हनि जे लाइ या हॉस्पिटलाइज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो, या जेके बे औलाद आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो. ऐं असांखे ज़रूरु दुआ में यादि कजो. वॾी महिरबानी.
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर. डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. 0301-9196-851 अव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबतो करे सघो था. काल जो सिलसिलो अञा बि जारी आहे. डॉक्टर साहिबु पैगाम पंहिंजो ॾेई चुको आहे, पर असांजी कोशिशि हूंदी आहे त वरी बि जेको काल करे थो भला उनखे डॉक्टर साहिबु शामिलु कंदा हलंदा. हिकु बि काल शामिलु करे छॾियूं पिया हली करे. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
1: साईं, मुंहिंजा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए? जी जी भली कार चवनि था. अली नवाज़ साहिब खे ठीकु आहियो? त भई ठीकु आहे मुंहिंजा साईं,
2: ख़ुशि आहियो?
1: दुआ आहे अलहमदुल्ला. छा पुछंदा साईं डॉक्टर साहिब खां?
2: डॉक्टर साहब जेको आहे इहो पासे में सूर थो पए थोरो.
1: अच्छा, उमिरि घणी आहे मुंहिंजे भाउ जी?
2: उमिरि थी वेंदी साईं 45 साल.
1: खॿे पासे या सॼे पासे या मथे सीने खां या हेठि पेट खां?
0: किचरो अची वेंदो आहे या यूटीआई इन्फेक्शन थी वेंदो आहे या स्टोन हूंदो आहे या जेको आहे सो गैस्ट्रिक पेन बि पइजी सघे थो. सो उन अधे खे इहो ई चवंदासीं, हिकु त जेको आहे सो जीरो सौंफ़ अधु चमची रोज़ाना राति जो पाणी में काढ़े ऐं उहो काढ़ो पीअनि, इनशाला ताला फ़र्क़ु पइजी ईंदो. वरना रूबरू क्लिनिक ते, सुभाणे मां क्लिनिक ते हूंदुसि त रूबरू ॾेखारे वञनि त वधीक बहितरु.
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु. सामिन, डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे. गुर्दे जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, पिते जी पथरी आहे, नक जी हॾी वधियलु आहे, गले जा गुदूद वधियलु आहिनि. का बि बीमारी लाइलाज न आहे. अव्हां खे पुराणे खां पुराणो स्किन जो मसइलो आहे. जीअं 2022 खां वठी असीं अक्सर ज़िकिर कंदा आहियूं त स्किन जा तमामु घणा इशूज़ आया ऐं काफ़ी मरीज़ अहिड़ा जिन खे 5 साल 4 साल 3 साल थिया आहिनि ऐं उन्हनि खे 10 साल थिया आहिनि. स्किन जा प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं उहे सिहतयाब नथा थियनि पिया. तव्हां कुझु चवणु चाहियो था डॉक्टर साहिबु?
0: माशाल्लाह काफ़ी सारा पेशंट्स जेको असां डील कया आहिनि ऐं अलहमदिल्ला काफ़ी सारा उन्हनि खे शिफ़ायाब थी चुकिया आहिनि.
1: तमामु बहितरीन. त घणी घणी 10 सालनि जो पेशेंट आहे स्किन जो, त उहे बि सिहतयाब थी वञनि था. मरीज़ भले स्किन जो प्रॉब्लम आहे, नक जी हॾी वधियलु आहे, गले जा गुदूद आहिनि, अव्हां खे फालिज आहे, जेके बिल्कुलु बि घुमी न आहिनि सघंदा, या जिन खे संधनि जो सूरु, जोड़नि जो सूरु, जेके कुंदरक वारा आहिनि डॉक्टर साहिबु वटि. अहिड़ा बि मरीज़ आया जेकी गाॾी मां लहंदा कोन हुया, पर वक़्तु गुज़रण खां पोइ जॾहिं डॉक्टर साहिबु इलाजु शुरू कयो त उन्हनि जो इहा पोज़ीशन बि थी त त

0: माना उहे सिहतयाब थी विया ऐं पाण डॉक्टर साहिब वटि ईंदा हुआ। हे काल जे कालर जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, केरु साहिब पियो ॻाल्हाए? नज़ीर खोसो साहिब खे भलीकार चवंदो आहे। बलोचिस्तान खां ॻाल्हायो पियो। बलोचिस्तान किथां ॻाल्हायो पिया मुंहिंजा साईं? अच्छा, सोबतपुर बलोचिस्तान खां। छा पुछंदा आहियो डॉक्टर साहिब खां? वेबसाइट जे थ्रू पिया ॿुधो या आस पास में आया हुते सिंध में?
1: न साईं, असां पंहिंजे घर में आहियूं, ॻोठ में आहियूं। असां वेबसाइट ते ॿुधूं ताज़ी असांजे नेटवर्क ते।
0: हलो, माशाल्लाह, तमामु बहितरीन। ॿुधो, एफएम ॿुधो, डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी डॉक्टर साहिब।
2: ॾिसे भाउ जी महिरबानी, असांखे बलोचिस्तान मां जेको असां कॉल कई आहे ऐं अधिक ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त खफ़ान जो सूर या मेग्रीन पेन या अधु मथे जो सूर जेके चवंदा आहियूं, त इन हवाले सां अधिक चवंदासीं त हिकु त असां वटि होम्योपैथिक में कामयाबु इलाजु मौजूदु आहे। जेकॾहिं काफ़ी दफ़ा ॿिए हंधि इलाजु कराए चुको आहे, फ़र्क़ु न पियो आहे, त असां वटि मेरापर जेको आहे सोचनि ऐं रूबरू ॾेखारे दवा वठी सघनि था, छो जो काफ़ी सारा बलोचिस्तान जा दोस्त असां वटि ईंदा
0: आहिनि। जीअं पहिरियां ईंदा जलमंगसी बलोचिस्तान खां, उस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान खां, त हीअ बि उतां जो साईं आहे।
2: असां वटि पेशंट बलोचिस्तान जा मौजूदु आहिनि जेके कोर्स ते आहिनि ऐं ईंदा आहिनि। बहरहाल अधिक ॿुधाईंदासीं त उस्त कुद्दूस हिकिड़ो ख़मीरा माजून ईंदो आहे, फ़िलहालु जेकॾहिं असां नथा अची सघनि त उहो तव्हां वठी करे अधु चमची सुबुह शाम नेराणे इस्तेमालु करे सघंदा ऐं ख़सख़स राति जो अधु चमची खीर में काढ़े ऐं उहो पीअनि। इनशा ताला उन सां बि अलाह ताला उनखे काफ़ी शेवा ॾींदो।
0: तमामु घणी महिरबानी सामिन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह, डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। 0301-2196-8151 डॉक्टर साहिब जो नंबर आहे। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि, मालूमात ॾींदा आहिनि असांजे मौज़ूज़ ॿुधंदड़नि खे, ऐं अलाह ताला जे हुकुम सां उहे मरीज़ सिहतयाब थी वञनि था। का बि बीमारी लाइलाज नाहे, अव्हांखे कॾहिं बि मायूस नाहे थियणो। मथे जो सूरु हुजे, अधु मथे जो सूरु आहे, इन खां अलावा तिरी वधी वञे थी, हेपाटाइटिस बी आहे, सी आहे, जिगर जूं ॿियूं बीमारियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिब कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। जंहिंजो कदु नंढो आहे, औरतुनि या मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कनि था। इन ते प्रोग्राम जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी जे तरफ़ ई वञे पियो, पर इन खां पहिरियां असां हिकिड़ी ॻाल्हि अञा प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलूं था, ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। भलीकार चवंदा, छा पुछंदा मुंहिंजा साईं डॉक्टर साहिब खां? मुंहिंजा अदा
1: बाबा डॉक्टर साहिब खां इहो पुछंदा वेई।
0: जी मुंहिंजा साईं,
1: 2013 में मां शादी कया वेई।
0: जी मुंहिंजा भाउ,
1: औलाद
0: नथी थिए पई। डॉक्टर साहिब अव्हांखे ॿुधाईंदो, अव्हां एफएम ॿुधो या हिते लाइन ते रहो, ॿुधो। जी डॉक्टर साहिब।
2: बिल्कुलु, देखी चवंदासीं त हिकु त जेके हुन जूं टेस्टूं मुकमल आहिनि थियल, त उहे रूबरू खणी अचनि ऐं ॾेखारे। हुन जो इलाजु बहरहाल होम्योपैथिक में मौजूदु आहे ऐं हुनजी जॾहिं पेशेंट साम्हूं।
0: जी साईं, तव्हां एफएम ॿुधो या वरी डॉक्टर साहिब खे ॿुधो।
2: बिल्कुलु, मां मौजूदु आहे ऐं अव्हां रूबरू अचो ऐं टेस्टूं खणी अचो, तव्हांखे दवा ॾींदासीं। ॾियण जी ज़ात रब ताला जी आहे, शिफ़ा उहो ई ॾींदो आहे। पर असां वटि होम्योपैथिक में अहिड़ा केसिस काफ़ी असां डील कया आहिनि जिन सां अलाह ताला जी महिरबानी सां औलाद थी वियो आहे, चाहे 5 साल जो हुजे चाहे 20 साल जो हुजे, उनखे औलाद थी वियो आहे।
0: बिल्कुलु यकीन, मां सम्झा थो अधे डॉक्टर साहिब जो सवाल जो जवाबु ॿुधी वरितो हूंदो, त जेके तव्हांजो रिपोर्टूं आहिनि, जेके तव्हांजूं टेस्टूं आहिनि, उहे खणी करे तव्हां डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारियो। अलाह सांजी ज़ात ॾियण वारी आहे। सामिन, प्रोग्राम जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणियुनि जे तरफ़ ई वञे पियो। डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। 0301-2196-8151 असांजो नंबर आहे लाइव कॉल जो। इन खां अलावा डॉक्टर साहिब जो बि साॻियो ई नंबर आहे, तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था। जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो, असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान, अलाह वाही।

मामलनि खे ॻुझो रखियो वियो। अब्बास राख़्ज़ी पारां भारत जे दौरे जो पाकिस्तान ते असर नथो पवे, ॻाल्हियुनि जे नुक़्तनि खे ॻुझो रखण ॻाल्हियुनि जी कामयाबी लाइ ज़रूरी हो। ॻाल्हियुनि दौरान राब्ते वारो अमल वज़ीर आज़म जे ज़रिए थी रहियो हो। समूरे अमल जी कामयाबी जो क्रेडिट समूरी मुस्लिम क़यादत ॾांहुं वञे थो।

अमेरिका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनुम बर्पा करे छॾींदासीं। आबना हुर्मुज़ जुमे ॾींहुं खुली वेंदो, को बि टूल टैक्स न हूंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी फ्रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ऐं UAE सदर शेख ज़ायद बिन अल नहान सां धार धार मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। ट्रम्प चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो, रिजीम चेंज सां फ़ाइदो नाहे थींदो। ईरानी क़यादत माक़ूल आहे, लबनान जंग मामूली तकरार आहे। इसराइल खे लबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। ईरान

थियल मुआदे जो मुख है अहम नुक्तो इो ही है ईरान कें भी सूरत में एटमी हथियार न ठाई। लबनान ते इसराइली कब्जो जारी रहो तो अमरीका से थियल मुआदो खतरे में पेजी सके तो। लबनान ते इसराइली हमलो या कब्जो मुआदे की बदकड़ी हों। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखी चाहे अमरीका ईरान विच में गालियन जो नो दौर जुमे का स्विट्जरलैंड में शुरू थो। मुआदे के हतमी शक्ल देने लाय सालिसी टीमू ईंदड़ हफ्ते इजलास कंदू। शुरुआती मुआदे ते बाजबता तौर अमल की शुरुआती जुमे का थी। ईरान ए अमरीका में मुआदे से पाकिस्तान जो दुनिया में वक़ार वधियो है। पाकिस्तान वड़ी सिफारती कामयाबी मानी है। कौमी असेंबली में खिताब कंदे दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो है त पार्लियामेंट में बिना सबूतन के इल्ज़ाम से अवाम वट गलत पैगाम इंदो। वज़ीर आज़म में फील्ड मार्शल नामुमकिन के मुमकिन करे दिखारियो है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तमीम बिन हमद अलसानी UAE सदर शेख जायद बिन अल नहान सा धार धार मुलाकात दौरान गाल बोल ट्रंप ईरान सा गाल जो बो मरलो आसान हों रिजीम चेंज सा फायदो ना है थींदो ईरानी क्यादत माकूल है लबनान जंग मामूली तकरार है इसराइल के लबनान में जिम्मेवारी जो मुजाहरो करणो पवंदो ईरान सा थियल मुआहदे जो मुख अहम नुक्तो इहो ही है त ईरान कें भी सूरत में हथियार न ठाईंदो लबनान ते इसराइली कब्जो जारी रहो त अमरीका सा थियल मुआहदो खतरे में पेजी सके तो लबनान ते इसराइली हमलो या कब्जो मुआहदे की भज कड़ी हों ईरानी परडेही वजीर अब्बास अराग्ची है त अमरीका ईरान विच में गालियन जो नओ दौर जुमे का स्विट्जरलैंड में शुरू थन्दो मुआहदे के हतमी शकल डेण लाय सालिसी टीमू ईंदड़ हफ्ते इजलास कन्दियूं शुरूआती मुआहदे ते बासाबता तौर अमल की शुरूआत जुमे का थन्दी

सिक्योरिटी ज़रिए चयो आहे त ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जी कामयाबी पाकिस्तान जी कामयाबी आहे। कुझु क़ुवतनि यूएई सां लॻापा ख़राब करण जी कोशिश कई पर नाकाम रहिया। पाकिस्तान ॻाल्हियुनि वारी समूरे अमल में टाकड़ी जो किरदार अदा कयो। पाकिस्तान जी कोशिश आहे त विच ओभर में मुस्तक़िल अमन क़ाइम थिए। ॻाल्हियुनि दौरान मुंझारे जहिड़नि मामलनि खे गुझो रखियो वियो। अब्बास इराक़ची पारां भारत जे दौरे जो पाकिस्तान ते असर नथो पवे। ॻाल्हियुनि जे नुक़्ते खे गुझो रखण ॻाल्हियुनि जी कामयाबी लाइ ज़रूरी हो। ॻाल्हियुनि दौरान राब्ते वारो अमल वज़ीर आज़म जे ज़रिए थी रहियो हो। समूरे अमल जी कामयाबी

ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वकार वधियो आहे। पाकिस्तान वरी सिफारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम वेंदो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे।

सिंध जी नई माली साल जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। गुज़िरियल माली साल जी भेट में तरक़ियाती बजट में 300 अरब रुपयनि जो कट लॻायो वियो। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज़। निज सुपाई तरक़ियाती बजट 520 अरब रुपयनि मां घटाए 385 अरब रुपया करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिहत खाते जी तरक़ियाती बजट 21 अरब रुपयनि मां घटाए 17 अरब रुपया करण जी तजवीज़। एजुकेशन सेक्टर जी बजट में बि घटाई 38 अरब रुपयनि मां घटाए 25 अरब रुपया करण जी तजवीज़। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम में बि 40 अरब रुपयनि जो कट लॻंदो। ज़िले तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुगो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। सूबे जे गैर तरक़ियाती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। नए माली साल जे तरक़ियाती बजट में का बि नई स्कीम शामिल न करण जो फ़ैसिलो। केटीए न्यूज़ सिंध जे नए माली साल जी बजट जा समूरा तफ़सील हथ करे वरिता। तफ़सीलनि मूजिब सूबाई ऐं ज़िले सतह ते हलंदड़ 3642 रिथाउनि लाइ 400 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी हुकूमत खां 64 अरब रुपयनि जूं तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो काथो लॻायो वियो। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो। सिंध जी नई माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जी मेगा प्रोजेक्ट्स लाइ 99 अरब 76 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 70 अरब 94 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। आबपाशी खाते लाइ 30 अरब 80 करोड़, वक्स ऐं सर्विस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिंध जी नई माली साल 2026-27 जी बजट सुभाणे वॾो वज़ीर मुराद अली शाह पेश कंदो।

0: अमन अमान बरकरार रखण में आलमन जो अहम किरदार है। आलम कौम के मुतहद रखण में भी अहम किरदार अदा कर सकन था। कौमी पैगाम अमन कमेटी के खिताब कंदे वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी है दहशतगर्दी के खात्मे लाए सभी के मुतहद थियणो पवंदो। इन फोरम जरिए भी मुल्क में अमन जो पैगाम वजन घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: शाहपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधिक राबते के लिए 0300-3385-569 03-00-33-8569।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202-0242460100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

घटाए 17 अरब रुपया करण जी तजवीज। एजुकेशन सेक्टर जी बजट में भी घटताई 38 अरब रुपयन मां घटाए 25 अरब रुपया करण जी तजवीज। जिलई तरक्याती प्रोग्राम में भी 40 अरब रुपयन जो कट लगंदो। जिलई तरक्याती प्रोग्राम लाए रुगो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज। सूबे जे गैर तरक्याती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी तजवीज डिनी वई। नए माली साल जे तरक्याती बजट में भी का नई स्कीम शामिल न करण जो फैसलो। केटीए न्यूज सिंध जे नए माली साल जी बजट जा समूरा तफ़सील हथ करे वरता। तफ़सीलनि मूजिब सूबाई ऐं ज़िलाई सतह ते हलंदड़ 3642 रिथाउनि लाइ 400 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाक़ी हुकूमत खां 64 अरब रुपयनि जो तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो खातो लॻायो वियो। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो। सिंध जे नए माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जे मेगा प्रोजेक्ट्स लाइ 99 अरब 74 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 70 अरब 94 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। आबपाशी खाते लाइ 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स ऐं सर्विसिस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़ डि॒नी वई। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजट सुभाणे वॾो वज़ीर मुहम्मद अली शाह पेश कंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत बजट ते पीपल्स पार्टी जा ख़दशा ख़तम करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ममलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कयानी सां गॾु बिलाल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। बजट ते समूरा ख़दशा ख़तम करण जी कोशिश। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी ठाहींदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात में बजट वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहंदो।

माली साल ॿ हज़ार छवीह सतावीह लाइ पंजाब जी 5,903 अरब जी बजट पेश। नाणे वारे वज़ीर मुश्तफ़ा शुजा पंजाब असेंबली में बजट पेश कई। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारनि में 7 ऐं पेंशन में 3.5% वाध जी तजवीज़। तरक़ियाती कमनि लाइ अरबें रुपया रखिया विया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लाइ 25,35 करोड़, बोर्ड ऑफ रेवन्यू लाइ 19 अरब ऐं पुलिस लाइ 12,88 करोड़ रुपया रखिया विया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाइ 270 अरब, मास ट्रांसिट सिस्टम लाइ 26,60 करोड़, हारी कार्ड ऐं ज़री तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 10 अरब रखिया विया। अमरीका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ई न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनुम बर्पा करे छॾींदासीं। आपला हरमुस जुमे ॾींहुं खुली वेंदो, को बि टोल टैक्स न हूंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी फ्रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ऐं UAE सदर शेख जायद बिन अल नेहान सां धार मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। ट्रम्प चयो त ईरान सां ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो आसान हूंदो, रिजीम चेंज सां फ़ाइदो न थींदो, ईरानी क़यादत माक़ूल आहे। लबनान जंग मामूली तकरार आहे, इसराइल खे लबनान में ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। ईरान सां थियल मुआदे जो मुख्य ऐं अहम नुक़्तो इहो ई आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार न ठाहींदो। लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल मुआदो खतरे में पइजी सघे थो। लबनान ते इसराइली हमिलो या कब्ज़ो मुआदे जी भजगड़ी हूंदो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ सालिसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती मुआदे ते बाज़ाबता तौर अमल जी शुरूआति जुमे खां थींदी।

अमेरिका ईरान मफ़ामती याददाश्त ते सही वारो हंधि तब्दील। स्विट्ज़रलैंड जे परडे॒ही वज़ीर चयो आहे त हाणे तकरीब जनीवा बदिरां जिनिसटाक में 19 जून ते थींदी। सिक्योरिटी सरियन चयो आहे त ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जी कामयाबी पाकिस्तान जी कामयाबी आहे। कुझु कुवतनि यूएई सां लाॻापा ख़राब करण जी कोशिश कई पर नाकाम रहिया। पाकिस्तान ॻाल्हियुनि वारे समूरे अमल में टियाकड़ी जो किरदार अदा कयो। पाकिस्तान जी कोशिश आहे त विच ओभर में मुस्तक़िल अमन क़ाइम थिए। ॻाल्हियुनि दौरान मुंझारे जहिड़नि मामलनि खे गुझो रखियो वियो। अब्बास राक्षी पारां भारत जे दौरे जो पाकिस्तान ते असरु नथो पवे। ॻाल्हियुनि जे नुक़्तनि खे गुझो रखणु ॻाल्हियुनि जी कामयाबी लाइ ज़रूरी हो। ॻाल्हियुनि दौरान राब्ते वारो अमल वज़ीर आज़म जे ज़रिए थी रहियो हो। समूरे अमल जी कामयाबी जो क्रेडिट समूरी मुस्लिम क़यादत ॾांहुं वञे थो। ईरान ऐं अमरीका में मुआदे सां पाकिस्तान जो दुनिया में वक़ार वधियो आहे। पाकिस्तान वॾी सिफारती कामयाबी माणी आहे। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पार्लियामेंट में बिना सबूतनि जे इल्ज़ामनि सां अवाम वटि ग़लति पैगाम ईंदो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल नामुमकिन खे मुमकिन करे ॾेखारियो आहे। अमन अवान बरकरार रखण में आलमनि जो अहम किरदार आहे। आलम क़ौम खे मुतहद रखण में बि अहम किरदार अदा करे सघनि था। क़ौमी पैगाम अमन कमेटी खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ सभिनी खे मुतहद थियणो पवंदो। हिन फोरम ज़रिए बि मुल्क में अमन जो पैगाम वञणु घुर्जे।

वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि वसीलनि में वाध ऐं टैक्स उघाड़नि बाबति इजलास। एक्साइज़ सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐं नाणे खाते जी कारकरदगीअ जो जाइज़ो वरितो वियो। मुराद अली शाह पारां टैक्स उघाड़ण वारो निज़ाम वधीक असराइतो बणण जी हिदायत। वॾे वज़ीर चयो त वसीलनि में वाध अवामी फलाह, तरक़ियाती मनसूबनि ऐं बहितर ख़िदमतनि जी फरहमी लाइ अणटर आहे।

सिंध में कारें जी कुती रस्म तक बनारियों कतल। गंबड़ के गोठ सताबो में जवाबदार सोनो बारी जो कारें इल्जाम हणी पैंजी सोट समिया बारी जो केक कतल कर छो। पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार कर वरतो। जवाबदार जो नारी नाले कतल करण जो एतराफी बयान भी सामू अची वो। भिटशाह में जवाबदार फायरिंग कर भाजाई के कतल कर छो। जराशाह कॉलोनी में जवाबदार असाब कोसो गोलू हणी अंसारा कोसो के जख्मी कर नारी अस्पताल में दम दई छो। जवाबदार फरार। हैदराबाद भरसा सेरी वाले इलाके में प्रेमी जोड़े मुबैना तौर फुलेली वाह में टप्पो डेई छो। नौजवान जो लाश रत नारी जी लाश की गोला जारी। इलाके वास मूजिब नौजवान ए नारी गडियल तौर से फुलेली केनाल में टप्पो डनो हो। पुलिस मूजिब शुरुआती जांच मूजिब जोड़ो किए के पसंद कद हो। जांच जारी है। हैदराबाद में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ खातन के मुलाजमन जो एहतजाज। पगारन में महंगाई के हिसाब से वाध करण जो मुतालबो। सिंध के सरकारी खातन के मुलाजमन मुतालबन की मंशा लाए गडियल एहतजाज किया। मुलाजमन मूजिब महंगाई तमाम घनी है। हुकूमत पगारन में 100% वाध करे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307359210।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 0242-46-0100।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383 85 569।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राबते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमरीका न हुजे हा त इसराइल जो वजूद ही न हुजे हा। तेहरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश कई त जहनम बर्पा कर छींदी। आबना हुर्मुज़ जुमे ढी खुली वेंदो, को भी टोल टैक्स न हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी और यूएई सदर शेख जायद बिन अल नहान से धार धार मुलाकात दौरान गाल बोल। ट्रंप ईरान से गालियों जो बो मरलो आसान हों, रेजीम चेंज से फायदो ना थो। ईरानी क्यादत मकबूल है। लबनान जंग मामूली तकरार है। इसराइल के लबनान में जिम्मेवारी जो मुजाहरो करो पवन। ईरान से थियल माहदे जो मुख अहम नुकतो इो ही है त ईरान कें भी सूरत में एटमी हथियार न ठाई। लबनान के इसराइली कब्जो जारी रो त अमरीका से थियल माहदो खतरे में पैजी सके। लबनान के इसराइली हमलो या कब्जो माहदे की भजकड़ी हों। ईरानी परडेही वजीर अब्बास राखी है त अमरीका ए ईरान विच में गालियों जो नव दौर जुमे का स्विट्जरलैंड में शुरू थी। माहदे की हतमी शकल देने लाए सालिसी टीमू ईदड़ हफ्ते इजलास कंदियों। शुरुआती माहदे से बाजबता तौर अमल की शुरूआत जुमे का थन्दी। अमरीका ईरान मफामती यादाश्त से सही वो हंध तब्दील। स्विट्जरलैंड के परडेही वजीर है हाँ तकरीब जनीवा बदरा जनस्टाक में 19 जून से थन्दी। सिक्योरिटी जरिये जो चवण है त ईरान अमरीका गालियों की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। कुछ कुवतू यूएई से लगापा खराब करण की कोशिश कई पर नाकाम रहा। पाकिस्तान गालियों वाले समूरे अमल में त्याकड़ी जो किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिश है त विच ओवर में मुस्तकिल अमन कायम थे। गालियों दौरान मुंझारे जड़न मामलों के गुझो रखो वो। अब्बास अराग़ची पारा भारत के दौरे जो पाकिस्तान से असर नो पवे। गालियों के नुकतन के गुझो रखण गालियों की कामयाबी लाय जरूरी हो। गालियों दौरान राबते वो अमल वजीर आजम के जरिए थी रो हो। समूरे अमल की कामयाबी जो क्रेडिट समूरी मुस्लिम क्यादत मने तो।

नई माली साल जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। गुज़िरियल माली साल जी भेट में तरक़ियाती बजट में 300 अरब रुपयनि जो कट लॻायो वियो। तरक़ियाती बजट 1000 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक़ियाती बजट 520 अरब रुपयनि मां घटाए 385 अरब रुपया करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिहत खाते जी तरक़ियाती बजट 21 अरब रुपयनि मां घटाए 17 अरब रुपया करण जी तजवीज़। एजुकेशन सेक्टर जी बजट में बि घटाई 38 अरब रुपयनि मां घटाए 25 अरब रुपया करण जी तजवीज़। ज़िलाई तरक़ियाती प्रोग्राम में बि 40 अरब रुपयनि जो कट लॻंदो। ज़िलाई तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ रुगो 15 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। सूबे जे गैर तरक़ियाती बजट 2560 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। नए माली साल जी तरक़ियाती बजट में का बि नई स्कीम शामिल न करण जो फ़ैसिलो। KTN न्यूज़ सिंध जे नए माली साल जी बजट जा समूरा तफ़सील हथ करे वरिता। तफ़सीलनि मूजिबि सूबाई

0: 2027 हलंदड़ 6,642 रिथाउनि लाइ 400 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वफ़ाकी हुकूमत खां 64 अरब रुपयनि जूं तरक़ियाती ग्रांट मिलण जो काथो लॻायो वियो। आलमी मालियाती इदारनि खां तरक़ियाती मनसूबनि लाइ मिलंदड़ पैसनि जी मद में 256 अरब रुपया मिलण जो अंदाज़ो लॻायो वियो। सिंध जे नए माली साल जी बजट में मकानी खाते ऐं कराची जे मेगा प्रोजेक्ट लाइ 99,76 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। ट्रांसपोर्ट खाते लाइ 70,94 करोड़ रुपया तरक़ियाती बजट रखण जी तजवीज़। आबपाशी खाते लाइ 30,80 करोड़, वर्क्स ऐं सर्विस खाते लाइ 31,89 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40,86 करोड़ रुपया मुख़्तस करण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिंध जे नए माली साल 2026-27 जी बजट सुभाणे वॾो वज़ीर वाद अली शाह पेश कंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत बजट ते पीपल्स पार्टी जा ख़दशा ख़तम करण लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जी मुमलकती वज़ीर बिलाल अज़हर कियानी सां गॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। बजट ते समूरा ख़दशा ख़तम करण जी कोशिश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी ठाहींदी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात में बजट वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल्हि थी। ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रहंदो। माली साल 2026-27 लाइ पंजाब जे 5,903 अरब रुपयनि जी बजट पेश। नाणे वारे वज़ीर मुश्तबा शुजा पंजाब असेंबली में बजट पेश कई। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारनि में 7 ऐं पेंशन में 3.5% वाध जी तजवीज़। तरक़ियाती कमनि लाइ 1,000 रुपया रखिया विया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लाइ 25,35 करोड़, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाइ 19 अरब ऐं पुलिस लाइ 12,88 करोड़ रखिया विया। साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाइ 270 अरब, मास ट्रांसिट सिस्टम लाइ 26,60 करोड़, हारी कार्ड ऐं ज़रई तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 10 अरब मुख़्तस। अमन अमान बरकरार रखण में आलमनि जो अहम किरदार आहे। आलम क़ौम खे मुतहिद रखण में बि अहम किरदार अदा करे सघनि था। क़ौमी पैगाम अमन कमेटी खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ सभिनी खे मुतहिद थियणो पवंदो। हिन फोरम ज़रिए बि मुल्क में अमन जो पैगाम वञणु घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।